फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शुक्रवार है। शाक संवत 1948 के वैशाख माह की 18वीं तिथि तदनुसार 8 मई सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये सभा। आप सभी को सुप्रभात।

यह आकाशवाणी का स्वागत केंद्र है एफएम एंड 102.6 MHz पर। सुबह के 6 बजने को हैं। आपसे थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा

दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं ये मातृ वंदना समूह स्वरों में। इस मातृ वंदना को शब्द दिए हैं डॉक्टर ललित मोहन ने और संगीतबद्ध किया है रमेश इंदु बासु और सरवत हुसैन ने।

अभी आपने समूसरों में ये मातृ वंदना सुनी। हम आपको बता दें, ये आपके अपने रेडियो सेट पर आकाशवाणी सागर FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिस पर आप इस वक्त भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुन रहे हैं। और आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ये पारंपरिक भजन हम आपको सुनवाते हैं अनूप जलोटा की आवाज़ में।

हम आपको बता दें, आप आकाशवाणी के सागर केंद्र से सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं नरेंद्र चंचल और उनके साथियों की आवाजों में ये रचना। इस रचना को लिखा है प्रदीप साहिल ने और सुरेंद्र कोहली ने इसकी धुन तैयार की है।

हम आपको बता दें ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। लीजिए श्रोताओ, कार्यक्रम विवरण के तहत हम आपको बता दें हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 6:30 पर यानी कि अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ। इसका हम आपको 389वां भाग सुनवाएंगे। गायक स्वर होगा सुरेश वाडेकर का। गुजरे जमाने के चंद फिल्मी गीत आपके जहनों को ताजगी देंगे। सुबह 6:40 पर कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। हमारा दैनिक वैचारिक चिंतन का कार्यक्रम सुबह सुबह होगा सुबह 7:00। आज कार्यक्रम कृषि संकेत में हमारा आज का विषय है अनाज भंडारण में सावधानियां। इस विषय पर हमें जानकारी देंगे विशेषज्ञ डॉक्टर AK त्रिपाठी। समय होगा सुबह 7:05। मनचाहे गीत कार्यक्रम का आप लुत्फ ले सकते हैं सुबह 7:10 पर। गांधी चर्चा कार्यक्रम आपके रेडियो सेट तक पहुंचेगा सुबह 7:45 पर। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत होगा सुबह 8:15 पर। इसमें हम आपको सुनवाएंगे कुछ बुंदेली लोकगीत। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे रूपक विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका पुनः प्रसारण होगा। आलेख डॉक्टर रंजीत साहा का और प्रस्तुति विनोद कुमार की होगी। सुबह 9:00 से आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। सुबह 10:00 हम रिले करेंगे भोपाल केंद्र से जिले की चिट्ठी। गजल और कव्वाली का कार्यक्रम गुलदस्ता आपके रेडियो सेट तक पहुंचेगा सुबह 10:05 पर। श्रोताओं के पसंद की फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम आपकी पसंद में सुबह 10:30 पर। उमंग NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11:00। शाम 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:30 पर आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लेजा के लफ्ज और लम्हे। गीत गजल और कव्वाली का कार्यक्रम संगीत सरिता होगा शाम 5:35 पर। शाम 6:00 मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। फिल्मी गीतों से लबरेज कार्यक्रम सदाबहार गीत सुनिएगा शाम 6:30 पर। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:45 पर और शाम 7:20 पर। आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश शाम 7:30 पर। रात्रि 8:00 का समय होगा चित्रपट संगीत का। संगीत सरिता

आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 8:30 पर सुनिएगा भेंट वार्ता, विषय होगा न्यूरो संबंधी समस्याएं और समाधान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रोहित कुशवाहा जो कि डीएम है न्यूरोलॉजी। आपसे भेंट करेंगे दीपक निषाद। मनचाहे गीत कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं के पसंद की फिल्मी गीत सुनवाएंगे रात्रि 9:00। और रात्रि 9:30 पर सुनिएगा विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं पर संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के स्वागत केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिएगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। इसका आज हम आपको 389वां भाग सुनवा रहे हैं। गायक स्वर है सुरेश वाडेकर का।

पुण्यात्मा काकभुशुंडी के आश्रम पहुंचकर ही पक्षीराज गरुड़ का संशय, माया जनित मोह और भ्रम दूर हो गए थे। किंतु उनकी ये जिज्ञासा अवश्य बनी हुई थी कि ऐसा क्यों कर हुआ, ये भी कि काकभुशुंडी ने कौवे का शरीर और श्री रामचरित का अक्षुण्ण भंडार कैसे और कहां पाया। उन्होंने अपनी ये जिज्ञासा काकभुशुंडी के सम्मुख प्रकट की। गरुड़ की ये जिज्ञासा सुनकर काकभुशुंडी हर्षित हुए और उन्होंने सविस्तार अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाई। फिर ये भी बताया कि कौवे के शरीर वाले जन्म में ही उन्हें श्री राम की अखंड भक्ति के साथ साथ इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इसी कारण कौवे के शरीर से उन्हें अत्यधिक प्रेम था और वे अपना ये शरीर त्यागने का विचार भी नहीं करते, क्योंकि ये वेद वर्णित सत्य है कि शरीर के अभाव में भगवान का भजन नहीं हो सकता।

अभी आप श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ सुन रहे थे। इसका आज हमने आपको 389वां भाग सुनवाया। गायक स्वर था सुरेश वाडेकर का। यह आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर FM एंड 102.6 MHz पर। हम आपको बता दें, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए, अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है गुजरे जमाने के चंद फिल्मी गीत। कार्यक्रम है भूले बिसरे गीत।

कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये पहला खूबसूरत गीत अभी आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को शब्द दिए थे शकील बदायूनी ने और संगीत बद्ध किया था गुलाम मोहम्मद ने।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: हम आपको बता दें, अभी आपने जो लता मंगेशकर की आवाज में गीत सुना उसकी फिल्म का नाम था अंबर और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1952 में। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM 102.6 MHz पर, जिस पर आप इस वक्त आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। और आइए, भूले बिसरे गीतों में से एक गीत हमने चुना है बाबूजी फिल्म से आप सभी के लिए। इस गीत को आवाज दी है अन्ना साहेब ने, गीत लिखा है एहसान रिजवी ने और संगीतबद्ध किया है पंडित रमाकांत ने।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM 102.6 MHz पर। आइए भूले बिसरे गीत इसको आगे बढ़ाते हैं और चांद फिल्म में हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज, गीत शैलेंद्र का, संगीत हेमंत कुमार का, और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1959 में।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है सुबह 11 से 11:30 बजे तक।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: और श्रोता, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत यहीं पर खत्म होता है। हम आपको बता दें, ये आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर FM 102.6 MHz पर आप

सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर के कार्यक्रम। इस समय में रियल स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे संस्कृत में समाचार।

0: मितं मैराथन इत्येतत् आकाशवाणी भवनात् आरभ्य कृषिभवनं रेलभवनं आरबीआई भवनं च गच्छति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य प्रसारभारत्याः च कर्मचारिणः स्वीय परिवारस्य सदस्यैः च सह अस्यां मैराथन क्रीडायां भागं ग्रहीष्यन्ति इति वार्ताः।
1: यह आपके अपने रेडियो सेट पर आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक वैचारिक चिंतन का कार्यक्रम सुबह सुबह। एक और नए कार्यक्रम नई सुबह सुबह के साथ आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। श्रोताओं, युवाओं को अक्सर भविष्य का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है, क्योंकि वे वर्तमान में मौजूद ज्ञान के भंडार में जोड़ने के लिए नए नए विचार और ऊर्जा लाते हैं। वे उत्साह और जीवन शक्ति ला सकते हैं, जिससे नई खोज और विकास हो सकता है, जिससे समाज, यहां तक कि दुनिया को भी बड़े पैमाने पर लाभ हो सकता है। यद्यपि युवा लोग सामाजिक परिवर्तन के एकमात्र चालक नहीं हैं, फिर भी युवा लोगों को परिवर्तन उत्पन्न करने वाले प्रमुख चालकों में से एक माना जाता है। युवा हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। भारतीय आबादी में लगभग 65% युवा शामिल हैं। हमारे देश में कई प्रतिभाशाली और मेहनती युवा हुए हैं, जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। भारत में युवा पीढ़ी उत्साही है और नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक है। विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, या खेल या पढ़ाई लिखाई हो, हर क्षेत्र में युवा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते नजर आते हैं। जब देश का युवा अपने कौशल और क्षमता का पूरा उपयोग करेंगे तो राष्ट्र निश्चित रूप से विकसित होगा और दुनिया भर में पहचाना जाएगा। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत। उन्हें उनकी उम्र के आधार पर समय समय पर नैतिक सबक देते रहना चाहिए। साथ ही उन्हें बुरे व्यवहार या कार्यों के परिणामों के बारे में भी बताते रहना चाहिए। अपने बच्चों को हर समय लाड़ प्यार करने की बजाय अपनी मदद आप करने देना भी सिखाना चाहिए। उन्हें सर्वप्रथम छोटे छोटे काम सौंपें, जैसे सब्जियों को अलग अलग करने या खिलौनों को सही जगह पर रखने में मदद करें। ये बातें उनमें जिम्मेदारी की भावना के साथ उन्हें प्रेरित करने का काम भी करती हैं और उन्हें जीवन में बड़ी जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार भी करती हैं। अपने बच्चों की अच्छाई की सराहना करें, ये उन्हें अच्छे शिष्टाचार के लिए प्रोत्साहित करेगा और अच्छे कामों को बार बार करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। हमारे उचित ज्ञान और सही दृष्टिकोण के साथ युवा प्रौद्योगिकी, विज्ञान, चिकित्सा, खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये न केवल उन्हें व्यक्तिगत पेशेवर रूप से विकसित करेगा, बल्कि समग्र रूप से राष्ट्र के विकास में भी योगदान देगा। सुबह सुबह ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे।

0: लीजिए श्रोताओ, अब समय है कार्यक्रम कृषि संगीत का। तो आइए, इसमें आज हम आपको सुनवाते हैं अनाज भंडारण में सावधानियां। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर ए के त्रिपाठी जी।
1: देखिए, ऐसा है, जब भी हम जो भी उत्पादन मिल रहा है उस उत्पादन को जब हम अपने उपयोग के लिए या कुछ समय बाद बिक्री के लिए हम उसको भंडारित करके फिर बाद में बिक्री करते हैं, उस दौरान हम पूरे अपने देश की बात करें तो करीब 8 से 10% अनाज हमारा भंडारण के दौरान कीड़ों के द्वारा या अधिक नमी की वजह से, फफूंद लग जाने की वजह से सड़ता है, खराब होता है। तो जो भंडारण की विधियां हैं उनमें अगर थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो निश्चित रूप से हम नुकसान से बच सकते हैं। भंडारण में जैसे हम गेहूं की बात करें, गेहूं में तिलूला लग जाता है, राइस बीबिल, धान में जो चावल हमारा है उसमें एक तरह का शुड़ी रहती है, इसी प्रकार से दालों में जो पल्स बीटल है, जो पंखी जिसको किसान भाई कहते हैं, तो ये तीन हमारे यहाँ मुख्य हैं। इसके अलावा अगर अधिक नमी पे हम भंडारित करते हैं तो नमी की वजह से और गर्मी की वजह से उसमें कई प्रकार के फफूंद, जैसे एस्परजिलस खासतौर से उसमें विकसित होता है, जो काफ़ी नुकसानदायक होता है। और ऐसे अनाज को अगर कोई जानवर या आदमी, मनुष्य कोई खा लेता है तो उसको नुकसान भी हो सकता है। तो इन सबसे बचाव के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमने अनाज निकाला है या जो बीज निकाला है उसको हम गहाई करने के बाद उसकी छनाई कर लें, और छनाई करने के बाद उसमें जो कटे पटे दाने या कचड़ा है उसको अलग कर दें और फिर उसका भंडारण करें। दूसरा, जो हम उसको सुखाएंगे तो सूरज की धूप में अच्छा तापमान है इस समय, उसको 2-3 बार पलट पलट के सुखाएं, जिससे उसके दानों में नमी का प्रतिशत है वो 8 से 10% रह जाए, तब हम उसको भंडारण करें। जो मिट्टी के पात्र होते हैं बड़े बड़े, जिनमें गेहूं का भंडारण किया जाता है, तो उसमें सबसे बड़ी सावधानी तो ये कि जो चूना से उसकी पुताई कर दें, और जब पुताई करें तो उसमें जो पानी मिलाएंगे उसमें 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर मेलाथियन दवा उसमें डाल दें, और फिर उसके बाद उसकी अंदर बाहर पुताई करें। और अगर मान लो पुताई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं उसमें, तो नीम की पत्तियों को 1 किलो लगभग नीम की पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ उसमें डाल के और उसमें आग लगा दें खाली करके, और ऊपर नीचे से उसको ढक दें, जिससे नीम की पत्तियों का जो धुआं होगा वो उसके अंदर जो उसके अंडे या लार्वा या जो एडल्ट होंगे वो उसके नीम पत्ती के धुआं से नष्ट हो जाए। दूसरा, जो बोरा बोरी हम उपयोग करते हैं उनको हम मेलाथियन का घोल बना लें, 50 लीटर पानी में 150 ग्राम करीब मेलाथियन दवा मिला के, और बोरा बोरी जो भी है उसमें डुबो डुबो के और उसको निकाल के और धूप में सुखा लें, उसके बाद ही हम उसमें भंडारण का काम। तो अगर ये उपाय हमने किए तो निश्चित रूप से हमें जो कीड़ों की समस्या है उससे निजात मिलेगी। दूसरा, जब हम भंडारण का काम अपने जो देसी विधि से करते हैं तो उसमें अगर हमें अपने उपयोग के लिए, माने खासतौर से खाने के लिए उसका भंडारण है, तो उसमें कोई भी प्रकार की दवाओं का उपयोग करने के बजाय 3 किलोग्राम नीम की पत्तियों का सूखा पाउडर प्रति कुंटल अनाज के साथ यदि हम रख देते हैं तो पूरे सीजन भर रखा रहेगा, 1 साल रखा रहेगा, उसमें किसी प्रकार के कोई कीड़े नहीं होंगे। सूखा हो, 8 से 10% नमी पे भंडारण करना है। वो पता कैसे करें कि हमने सुखाने के बाद जब हम उसके दानों को मुंह में डाल के देखें तो कट की आवाज दांतों के नीचे दबाने से होनी चाहिए। अगर वो कट की आवाज आती है तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छे से सूख गया, और उसमें हम 3 किलोग्राम नीम की पत्तियों का सूखा पाउडर 1 कुंटल अनाज के साथ मिला के भंडारण कर सकते। इसी प्रकार से हम चने का भी भंडारण कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ चना काफी मात्रा में होता है। तो ये देसी पद्धतियां हो गई। दूसरा, जिनको भंडारण खुले कमरों में या बोरों में भंडारण करना है तो बोरों का उपचार हमने बताई दिया आपको, साथ ही उसमें कई बार अपन रासायनिक दवाओं का उपयोग करते हैं, खासतौर से EDB कैप्सूल का। तो उसमें क्या करते हैं कि हमने खुले कमरे में रख दिया और EDB कैप्सूल डाल के उसको तोड़ देते हैं, लेकिन तोड़ने के पहले उसको एक पॉलिथीन शीट से ढकना जरूरी है, क्योंकि जो उसके अंदर गैस निकलेगी, फॉस्जिन गैस, वो गैस उड़ ना पाए, अंदर ही अंदर उसका प्रभाव रहे, तो उसके लिए उसको पॉलिथीन से ढक सकते हैं ना, और ढकने के बाद हम उसको ढका रहने दें, जिससे वो गैस, जो कीड़े वगैरह होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। तो ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से जो है कीड़ों की समस्या नहीं आ पाएगी।
0: अनाज भंडारण में सावधानियां, इस विषय पर अभी हमें जानकारी दे रहे थे विशेषज्ञ डॉक्टर ए के त्रिपाठी जी।
2: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्र।

0: का गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
1: यह आपके अपनी रेडियो सेट पर आकाशवाणी सागर एफ एम 102.6 MHz पर हम आपको बताना चाहेंगे सुबह के 7:10 होने को हैं। आपसे थोड़ी देर में भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ। राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है सोमनाथ, कहा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का पहला जत्था कल रवाना। आज प्रदेश के ग्वालियर समेत 21 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कल 9 रन से हराया। आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। भारी खरीद, अच्छी फसल और किसानों के पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित और सुरक्षित भविष्य के प्रति देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के पहले जत्थे के 1100 श्रद्धालुओं को ट्रेन से रवाना किया। ये जत्था आज सोमनाथ पहुंचेगा। जत्थे को रवाना करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सोमनाथ हमारी प्राचीन विरासत, आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। सोमनाथ साक्षी है कि सृजन शक्ति हमेशा विनाशकारी शक्ति से प्रभावी होती है।
1: गुजरात भगवान श्री कृष्ण के काल से जब द्वारकाधीश ने अपने जीवन काल में अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो पूरा देश अलग दौर में पहुंचा। और हम सब जानते हैं 1000 साल पहले भारत को काली छाया ने ग्रहण के रूप में डसा तो बाबा सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ ये स्वाभिमान के साथ भी जुड़ा हुआ है। सोमनाथ हमारे देश के विकास का पर्याय भी है।
0: संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित ये गौरवशाली यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत निकाली जा रही है। वियतनाम के राष्ट्रपति तुलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन्ह और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है। उच्च शिक्षा विभाग के ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कराने की अंतिम तारीख 15 मई है। पंजीयन 1 और 2 मई से शुरू हुआ था और कल तक विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर और एनसीटी पाठ्यक्रमों में कुल 60,000 से ज्यादा पंजीयन हो चुके हैं। प्रथम चरण की आवंटन सूची 20 मई को ई प्रवेश पोर्टल पर जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल सफाई मित्रों को पीपीई किट प्रदान की। पीपीई किट में रेनकोट, फुल बॉडी ड्रेस, हेलमेट, ग्लव्स, मास्क और रिफ्लेक्शन जैकेट शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्मीबाई और काजल सटोरिया को आवंटन आदेश पत्र और मकान की चाबी प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दिनेश मौर्य को 50,000 रुपए की ऋण राशि का चेक प्रदान किया। डॉ. यादव ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पूजा गिरी गोस्वामी को सहायता समूह के लिए 2,00,000 रुपए से अधिक की ऋण राशि का भी चेक प्रदान किया। राज्य सरकार ने डॉ. निवेदिता शर्मा को मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कल अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार डॉ. निवेदिता शर्मा का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पूरे होने तक रहेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। भोपाल स्थित भारत भवन में आज से माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ शुरू हो रहा है। ये कार्यक्रम हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने के जश्न में आयोजित किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर के 60 से ज्यादा जाने माने पत्रकार, संपादक और विचारक शिरकत करेंगे। आकाशवाणी के 90 साल पूरी होने के जश्न में आज सुबह 8:30 पर भोपाल में एक खास वॉकेथॉन का आयोजन किया जा रहा है। श्यामला हिल्स स्थित आकाशवाणी भोपाल केंद्र के दफ्तर से इस वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह आयोजन रेडियो की इस ऐतिहासिक यात्रा को सलाम करने का एक अनोखा तरीका है। प्रदेश में कुछ हिस्सों में कल आंधी और बारिश होने से तापमान में गिरावट आई और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार कल रीवा में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया, जबकि ग्वालियर, नौगांव, सीधी और सतना में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के ग्वालियर समेत 21 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 34 जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री या इसके आसपास बना रह सकता है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कल 9 रन से हरा दिया। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बारिश होने से बाधित इस मुकाबले में 213 रनों के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में कल विश्व एथलेटिक्स दिवस के अवसर पर माधवराव सिंधिया जिला खेल स्टेडियम में विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स पर तत्काल सुरक्षा सुधार कार्य किए जाएं। सतना में जिला पशु कल्याण समिति की बैठक में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार ने गौशालाओं की विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आगर मालवा में जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत मकानों की गणना और स्वगणना कार्य को शत प्रतिशत पूरा कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 प्रगणकों को एसडीएम द्वारा सम्मानित किया गया। झाबुआ में आज सांसद अनिता चौहान की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति की बैठक आज आयोजित की जाएगी। मंडला जिले के आकांक्षी विकासखंड नारायणगंज में नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की कल संभागायुक्त धनंजय सिंह द्वारा समीक्षा की गई। शाजापुर जिले और शुजालपुर तहसील में कल नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। धार में वन विभाग द्वारा कर्मचारियों की कार्य क्षमता वृद्धि के लिए प्रदेश की पहली AI ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आपका अपना रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर एफएम एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप आकाशवाणी के सागर के कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। हम आपको बता दें, इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए, अब आपकी खिदमत पे पेश है फिल्मी गीतों से सजा आपका फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत।

कार्यक्रम मनचाहे गीत का ये पहला मनचाहा गीत आपका आई मिलन की बेला फिल्म से था, मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को लफ्ज दिए थे हसरत जयपुरी ने और संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। अनुरोध करता आप सभी लोग थे बेमेत्रा छत्तीसगढ़ से, सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटाई से नारायण वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, ये छत्तीसगढ़ से थे। और एक ये पत्र कंवर कॉलोनी बड़वाह से हमें मिला है प्रवीण श्री।

0: माली, मीना श्रीमाली, आदित्य, आदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए कार्यक्रम मनचाहे गीत। और आइए, अगला मनचाह गीत आपका आई मिलन की रात फिल्म से है। अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज और उनके साथियों की आवाजों में है। समीर के बोल हैं, आनंद मिलन का ये संगीत है और पसंद करने वाले आप सभी लोग हैं। ये हमें पत्र मिला है पटेल नगर मालोड पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया और कुछ व्हाट्सएप भी मिले हैं इस गीत के लिए। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, कोवात रोहतास बिहार से सोनम सिंह, अनामिका सिंह, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया, राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू मोनू, रानू सपना, शिवी सलोनी, पेंटर बाबू, विशाल सिंह, विवेक सिंह और शिवपुरम कॉलोनी से कमला देवी महोबिया, अनय, अनाया और इशू बाबू।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र एफ एम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आपके अपने रेडियो सेट के स्केल पर, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए कार्यक्रम मनचाहे गीत। और आइए, आपका अगला मनचाहा गीत हाजिर है नूरी फिल्म से। नितिन मुकेश लता मंगेशकर की आवाज़ों में इस गीत को लिखा है जानिसार अख्तर ने, संगीतबद्ध किया है खय्याम ने, और अनुरोधकर्ता आप सभी लोग हैं। ये पत्र हमें मिला है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल और रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जसवीर, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल।

ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर और जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए हैं कार्यक्रम मन चाहेगी। तो और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी आकाशवाणी सागर का लाइव प्रसारण सुन रहे हैं। जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए हैं कार्यक्रम मन चाहेगी, तो राइए आपका अगला मनचाहा गीत बालिका वधू फिल्म से है। इस गीत को आवाज दी है अमित कुमार ने, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है RD बर्मन ने और पसंद करने वाले आप सभी लोग हैं। ये पत्र हमें मिला है NR श्रीवात्री, श्रीमती केशा श्रीवात्री, हेमंत, योगेश, कैलाश श्रीवात्री, निशा, सुनीता, विनीता, अभय, आभा, अनिमेश, आयुष और पूरा श्रीवात्री परिवार। ये लक्ष्मीपुरा चोपड़ा के सामने सागर मध्य प्रदेश से ये पत्र मिला था और आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये पत्र में मिला है ताज मोहम्मद अंसारी और गुलाम साबिर।

शाही महराज जहां और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका के साथ बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक, मीका बिरक और साथ ही साथ महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोडके, नंदा बोडके और हनुमान बोडके।

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम मनचाहे गीत यहीं पर संपन्न होता है। हम आपको बता दें, आज का ये फिल्मी सफर आपने तय किया अपने रेडियो मित्र मासूम आलम के साथ। ये आपके अपने रेडियो सेट पर आकाशवाणी सागर FM 102.6 MHz पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप हमारे आकाशवाणी सागर का लाइव प्रसारण सुन रहे हैं। हम आपको बता दें, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिएगा गांधी चर्चा।

नमस्कार, आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन। अभी तक आपने सुना, सर एडवर्ड गेट अंत तक दृढ़ रहे और उन्होंने समिति की सिफारिशों पर पूरा पूरा अमल किया। इस प्रकार 100 साल से चले आने वाले तीन कठिया के कानून के रद्द होते ही निलहे गोरों के राज्य का अस्त हुआ। जनता का जो समुदाय बराबर दबा ही रहता था, उसे अपनी शक्ति का कुछ भान हुआ और लोगों का ये वहम दूर हुआ कि नील का दाग धोए धुल ही नहीं सकता। मैं तो चाहता था कि चंपारण में शुरू किए गए रचनात्मक काम को जारी रखकर लोगों में कुछ वर्षों तक काम करूं और अधिक पाठशालाएं खोलूं और अधिक गांवों में प्रवेश करूं। क्षेत्र तैयार था, पर ईश्वर ने मेरे मनोरथ प्रायः पूरे होने ही नहीं दिए। मैंने सोचा कुछ और था और देव मुझे घसीट कर ले गए एक दूसरे ही काम में। और अब इससे आगे चंपारण में अभी मैं समिति के काम को समेट ही रहा था कि इतने में खेड़ा से मोहनलाल पंड्या और शंकरलाल पारीख का पत्र आया कि खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो गई है और लगान माफ कराने की जरूरत है। उन्होंने आग्रह पूर्वक लिखा कि मैं वहां पहुंचूं और लोगों की रहनुमाई करूं। मौके पर जांच किए बिना कोई सलाह देने की मेरी इच्छा नहीं थी, ना मुझ में वैसी शक्ति या हिम्मत ही थी। दूसरी ओर से अनसुईया बाई का पत्र उनके मजदूर संघ के बारे में आया था। मजदूरों की तनख्वाहें कम थीं, तनख्वाह बढ़ाने की उनकी मांग बहुत पुरानी थी। इस मामले में उनकी रहनुमाई करने का उत्साह मुझ में था, लेकिन मुझ में ये क्षमता ना थी कि इस अपेक्षाकृत छोटे प्रतीत होने वाले काम को भी मैं दूर बैठकर कर सकूं। इसलिए मौका मिलते ही मैं पहले अहमदाबाद पहुंचा। मैंने ये सोचा था कि दोनों मामलों की जांच करके थोड़े समय में मैं वापस चंपारण पहुंचूंगा और वहां के रचनात्मक काम की देखरेख करूंगा। पर अहमदाबाद पहुंचने के बाद वहां ऐसे काम निकल आए कि मैं कुछ समय तक चंपारण जा ही नहीं सका और जो पाठशालाएं वहां चल रही थीं, वे एक एक करके बंद हो गईं। साथियों ने और मैंने कितने हवाई किले रचे थे, पर कुछ समय के लिए तो वे सब ढह गए। चंपारण में ग्राम पाठशालाओं और ग्राम सुधार के अलावा गोरक्षा का काम भी मैंने हाथ में लिया था। गोरक्षा और हिंदी प्रचार के काम का इजारा मारवाड़ी भाइयों ने ले रखा था। इसे मैं अपने भ्रमण में देख चुका था। बेतिया में एक मारवाड़ी सज्जन ने अपनी कार्यशाला में मुझे आश्रय दिया था। बेतिया के मारवाड़ी सज्जनों ने मुझे अपनी गौशाला के काम में फांद लिया था। गौरक्षा के विषय में मेरी जो कल्पना आज है, वही उस समय बन चुकी थी। गौरक्षा का अर्थ है गौवंश की वृद्धि, गौजाति का सुधार, बैल से मर्यादित काम लेना, गौशाला को आदर्श दुग्धालय बनाना आदि आदि। इस काम में

जाए, जो मजदूर काम पर जाना चाहें उसके साथ जोर जबरदस्ती ना की जाए, मजदूर भिक्षा का अन्न ना खाएं, हड़ताल कितनी ही लंबी क्यों ना चले, वे दृढ़ रहें और अपने पास पैसा ना रहे तो दूसरी मजदूरी करके खाने योग्य कमा लें। मजदूर नेताओं ने ये शर्तें समझ लीं और स्वीकार कर लीं। मजदूरों की आम सभा हुई और उसमें उन्होंने निश्चय किया कि जब तक उनकी मांग मंजूर ना की जाए अथवा उनकी योग्यता अयोग्यता की जांच के लिए पंच की नियुक्ति ना हो तब तक वे काम पर नहीं जाएंगे। तो अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक वाचन। और आइए अब सुनते हैं ये भजन।

0: अभी आप गांधी चर्चा सुन रहे थे। वाचन और प्रस्तुति जय शेखर की थी।
1: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
0: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे समाचार प्रभात।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसी के, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया।

0: अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव A. अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक

0: सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन्ह और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3-सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना

0: वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे, लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
0: धन्यवाद निखिल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आपको बता दें, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: ओहो भाई साहब, फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
3: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
2: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है, चक्की का पक्का साथी जोयल पत्थर लाओ और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में जोयल पत्थर।
3: जोयल के असली पत्थर के लिए आए ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 4, लिंक रोड, सागर।
4: ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जिस पर आप इस वक्त कार्यक्रम लोक संगीत ट्यून किए हुए हैं। और आइए इस कार्यक्रम में अगला बुंदेली लोक गीत, जो कि विदाई गीत है, हम आपको सुनवा रहे हैं राम गुलाम बहुदेले की आवाज में।
5: परंपरा जा युगन युगन से चली हम

0: साथियों नमस्कार। सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्धन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और कुल आदि ग्रामवासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
1: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर लीजिए। इस कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवाते हैं सुषमा शर्मा की आवाज में ये बन्ना गीत।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिएगा रूपक, विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, आलेख डॉक्टर रंजीत साहा का और प्रस्तुति विनोद कुमार की।

0: रचनारत रहा, उसे आज सारा विश्व रवींद्रनाथ ठाकुर के नाम से जानता है।
1: अपने समय और समाज को संबोधित करने और आने वाले समय की पदचाप को पहचान कर उससे सबको परिचित कराने वाले एक कालजयी कवि को भी ये एहसास होता है कि वो जो कुछ और जितना कुछ दे पाया उससे कहीं अधिक देना तो रह ही गया।
0: संभवतः कुछ देने जैसी योग्यता उनमें थी भी नहीं। जिसे अपनी अपूर्णता का निरंतर बोध होता रहे वही कवि ऐसी पंक्तियां लिख सकता है। पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर और माता शारदा देवी की 14वीं संतान रवींद्रनाथ का जन्म 1861 में कोलकाता स्थित जोड़ा सांको नामक भव्य भवन और अभिजात परिवेश में हुआ था। बचपन से ही कठोर अनुशासन में रहे रवींद्रनाथ अपने आत्मलीन स्वभाव के कारण बेहद संवेदनशील भी थे। घर की चहारदीवारी में बंद बालक कवि को संस्कृत शिक्षक शकुंतला और अंग्रेजी शिक्षक मैकबेथ पढ़ाया करते थे। साथ ही बांग्ला पद्यांश में उनके रूपांतरों के लिए भी दबाव डाला जाता था।
1: 12 वर्ष की उम्र में तत्व बोधनी जैसी प्रौढ़ पत्रिका में उनकी अभिलाषा शीर्षक कविता का छपना कम विस्मयकारक नहीं था।
0: युवा काल से ही रवींद्रनाथ ने काव्याभ्यास के दौरान ब्रज, मथुरा, वृंदावन और मिथिला तथा असम तक सुविस्तृत काव्य परंपरा का अवगाहन एवं राधा कृष्ण के अनन्य प्रेम को निवेदित काव्य सृजन को आधार बनाकर भानु सिंह ठाकुरेर पदावली का प्रणयन किया था।

0: सन 1884 में मात्र 16 वर्ष की उम्र में गेय पदों में भानु सिंह ठाकुरेर पदावली की रचना करके सारे बंगाल को स्तब्ध और विस्मित करने वाले रविंद्रनाथ ने भणिता के तौर पर अपना नाम भानु सिंह रखा था। ये रवि अर्थात सूर्य यानी भानु पर्याय का द्योतक था।
1: गहन कुसुम कुंज माझे मृदुल मधुर वंशी बाजे बिसरी त्रास लोक लाजे सजनी आओ आओ लो गगन सघन अब तिमिर मगन भव तड़ित चकित अति घोर मेघ बट शाल ताल तरु सभय तबध सब पंथ विजन अति घोर।
2: सन 1887 में भारतीय पत्रिका में प्रकाशित इस रचना के बारे में यही मान लिया गया था कि ये ब्रजबुली यानी बांग्ला ब्रज और मैथिली मिश्रित भाषा के किसी अज्ञात या अल्प ज्ञात प्राचीन कवि की रचना है।
0: उनकी आरंभिक रचनाओं की बात करें तो 18 वर्ष की आयु में लिखित प्रभात जागरण शीर्षक कविता पर रहस्यवाद का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है, जिसने तत्कालीन साहित्यिक मंच पर इस युवा कवि की उपस्थिति को अनायास ही गरिमा मंडित कर दिया।
3: अंधियारी कंदरा में पंछियों का गान पसार रहा है पांखें, जाने कैसे संभव हो गया कि गहरी नींद से जगकर जीवन आज खोल रहा है आंखें। बहता जाऊंगा धरती पर कल कल छल छल, गाता जाऊंगा करुणा का गीत, कितना प्रखर है सूर्य का आलोक और कितना मधुर खग संगीत।
2: काव्य सर्जना के इस विस्मयपूर्ण निदर्शन के साथ प्रौढ़ता के पथ पर निरंतर अग्रसर ये कवि 20वीं सदी के प्रथम दशक यानी 1901 से 1910 में ही अपने उत्कर्ष तक जा पहुंचा था।
0: चार महत्वपूर्ण उपन्यासों चोखेर बाली, नौका डूबी, प्रजापतिर निर्बंधों और गोरा का लेखन इस दृष्टि से बहुत महत्व

0: महत्वपूर्ण है। इसी तरह 10 से अधिक निबंध संग्रहों आत्मशक्ति, भारतवर्ष, चारित्र पूजा, प्राचीन साहित्य और लोक साहित्य आदि से उनकी प्रतिभा और वैचारिक विमर्श की क्षमता का पता चलता है।
1: यही नहीं, कई नाटकों, हास्य कौतुक, व्यंग कौतुक, शारदोत्सव, चार विशिष्ट काव्य संकलनों, नैवेद्य, शिशु, खेया और गीतांजलि के प्रकाशन के साथ रविन्द्रनाथ बांग्ला साहित्य के सर्वप्रिय, अनन्य और अप्रतिम हस्ताक्षर के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। बहुतों के लिए ये हैरानी भरी सूचना होगी कि सुप्रसिद्ध हिंदी कथाकार गोपाल राम गहमरी ने रविन्द्रनाथ की नृत्य नाटिका चित्रांगदा का अनुवाद इसके प्रकाशन यानी 1892 के 3 वर्ष बाद ही सन 1895 में ही किया था। इससे युवा कवि रविन्द्रनाथ के बढ़ते प्रभाव का पता चल जाता है।
0: हिंदी में कवि रविन्द्रनाथ की स्वीकार्यता सरस्वती पत्रिका द्वारा वर्ष 1901 से लेकर इसके अंत तक बनी रही और सरस्वती के साथ हिंदी की अन्य पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं अनुदित होकर निरंतर छपती रहीं।
1: 1910 में रविन्द्रनाथ ठाकुर प्रणीत बांग्ला कृति गीतांजलि और इसी की स्वयं कवि द्वारा अंग्रेजी में अनुदित गीतांजलि वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रचना है।
0: वर्ष 1908 और 1910 के बीच लिखित गीतांजलि के गीतों में उदात्त भावों की गहनता, गेयता के साथ इतनी सहजता, सरलता और प्रांजलता लिए व्यंजित हुई थी कि ये थोड़े ही समय में किसी भी बांग्ला भाषा भाषी के लिए अनिवार्य तौर पर पाठ्य और गेय हो गई। रविन्द्रनाथ के अनुसार, मेरे ये गीत निराभरण हैं, इनमें परिधान और अलंकार का व्यर्थ अहंकार नहीं।
2: मानव पुत्र तीव्र व्यथाय कहे नहे ईश्वर, ए पान पात्र निदारुण विषे भरा, दूरे फैले दाओ।
0: लेकिन रविन्द्रनाथ ने गीतांजलि में समर्पण समृद्ध भावांजलि तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखा है। वो समस्त लोकायतन के साथ किसान और मजदूरों की आकांक्षा, पीड़ा, यंत्रणा और नियति को वाणी देता धूप और बारिश में कार्यरत मेहनतकशों की मुक्ति को परिभाषित करना चाहता है।
3: वो गए हैं वहां जहां गोड़ कर धरती, करते हैं किसान खेती, तोड़ कर पत्थर बना रहे हैं राह और खट रहे 12 माह, धूप और बारिश में सबके साथ धूल अटे हैं जिनके दोनों हाथ। कैसी मुक्ति, कहां है मुक्ति, कहां रखी है मुक्ति।

0: ये देखकर आश्चर्यचकित और गर्वित होना स्वाभाविक ही है कि दो दो राष्ट्रों भारत और बांग्लादेश को राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक और ओ आमार सोनार बांग्ला प्रदान करने वाले रविंद्रनाथ ही एकमात्र ऐसे भारतीय कवि हैं जो निर्विवाद रूप से विश्व कवि भी हैं।
1: विश्व कवि के रूप में रविंद्रनाथ की उपस्थिति का निहितार्थ क्या है, इसके बारे में कवि और चिंतक श्री अशोक वाजपेयी कहते हैं।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर, मैं समझता हूँ कि भारतीय साहित्य के इतिहास में एक अभूतपूर्व प्रतिभा है। उनसे बड़े साहित्यकार पहले हुए हैं, कालिदास, वाल्मीकि, लेकिन रविंद्रनाथ की तरह वो इतनी विधाओं में मूर्धन्य नहीं थे जितना अकेले रविंद्रनाथ थे। कविता में, उपन्यास में, गल्प में, चिंतन में, शिक्षा में, कला में, संगीत में, नृत्य में, रंगमंच में कोई ऐसा व्यक्ति भारतीय परंपरा में नहीं हुआ इसने इतने अनुशासनों को एक साथ साधा हो और उनमें मूर्धन्यता अर्जित की हो। आधुनिक या समकालीन किसी साहित्यकार को विश्व साहित्य में पहली बार जगह रविंद्रनाथ ने ही दिलाई, और रविंद्रनाथ की ही वजह से कबीर का विश्व प्रवेश हुआ। दिलचस्प बात यह है कि रविंद्रनाथ का प्रभाव समकालीन विश्व साहित्य पर जो पड़ा वो भी पहले कभी किसी का नहीं पड़ा था। जहाँ तक भारतीय भाषाओं का प्रश्न है, रविंद्रनाथ पहले ऐसे साहित्यकार हुए

0: जिनका लगभग सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य पर प्रभाव पड़ा।
1: रविंद्रनाथ ने अपनी कृतियों द्वारा भारतीय संस्कृति में निहित परंपरागत मूल्यों और समय समय पर होने वाले परिवर्तनों एवं देशकाल के स्पंदनों का मूल्यांकन करते हुए आधुनिकता की युगीन व्याख्या की। उनका जोर इस बात पर रहा कि आधुनिकता सिर्फ शिल्प या कौशल नहीं, मशीनी उपयोग नहीं, विषय की नवीनता भी नहीं, बल्कि समग्र जीवन दृष्टि है। आप हैं प्रसिद्ध कवित्री और विदुषी डॉक्टर अनामिका, आपका कहना है?
2: जब भी जीवन में, देश के जीवन में कोई बड़ी घटना घटती है तो उसका रेटोरिक भी बहुत बड़ा हो जाता है। कविता की तीन परतें होती हैं। एक तो उसकी परत होती है चुप्पी, दूसरा उसका परत होता है वक्तृत्व कला, और तीसरी परत होती है उसकी जिसमें वो जन मन तक पहुंचने के लिए अर्थ संगीत का सृजन करता है। इन तीनों परतों में जातीय स्मृतियों की अनुगूंजें भरी रहती हैं। महाकवि रवींद्रनाथ ठाकुर का सबसे बड़ा योगदान है कि जन जीवन के कोलाहल और जन मन का संगीत, दोनों के छंद की पहचान इनको थी। उसके भीतर पहाड़ भी है, नदियां भी है, सबकी अनुगूंजे हैं। जब राष्ट्र का निर्माण हो रहा होता है तब रूमानी आदर्शवाद और निषिद्ध विस्तार हमारे यहाँ घटित हुआ। उसको हम रविन्द्रनाथ टैगोर के मल्लाह के गीतों में, उनके साधारण गीतांजलि के गीतों में, उनके साधारण जनजीवन में गाए जाने वाले हारमोनियम पर गाए जाने वाले रविन्द्र संगीत में अब तक गूंजने वाले जो गीत हैं, उन सब में वो देखते हैं अलग अलग छवि। एक तो उनका रेंज इतना बड़ा था, उनका विस्तार इतना बड़ा था। जैसे उन्होंने शिशु गीत लिखे, कथा गीत लिखे, या उर्वशी जैसे चरित्र पर जो कविताएं लिखी, मौसम को लेके गीत लिखे, सब में ही लोक धुन और शास्त्रीय संगीत और लोक साहित्य और शास्त्रीय साहित्य दोनों की गरिमा हमें छनी हुई दिखती है एकदम सार रूप में। तो अपने युग के महाप्राण वैभव को रूमानी ऊंचाई देने में गुरुदेव का बड़ा महत्व है।
3: रुद्र बेशे कमंगला कालो मेघे।
4: उन्होंने परंपरागत आख्यानों को आधुनिक भाव बोध से समृद्ध कर उन्हें सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक बना देने की अद्भुत क्षमता अर्जित की थी। ब्राह्मण शीर्षक लंबी कविता में वर्णित सत्यकाम जाबाला प्रसंग उदाहरण स्वरूप रखा जा सकता है, जिसमें सत्य कथन ही ब्राह्मणत्व का श्रेष्ठ निदर्शन माना गया है।
5: निर्लज्ज अनार्य का अहंकार देख कोई तो हंसा, किसी ने उसे धिक्कारा। गौतम ऋषि आसन से उठे, उन्होंने बाहें खोल बालक को हृदय से लगाया और कहा, बेटा तुम अब्राह्मण नहीं हो, तुमने सत्य के वंश में जन्म लिया है, तुम द्विजोत्तम हो।
4: जातिच्युत सर्वहारा, रवींद्रनाथ इस व्यवहित पद से अपनी पहचान बनाते हुए अपमानित एवं तिरस्कृत जनों के साथ खड़े रहे और उनकी आकांक्षा को तीव्र मुखर किया। अपने 70वें जन्मदिन पर रवींद्रनाथ ने उक्त कविता में व्यक्त मर्म को अपनी एक टिप्पणी में इस प्रकार रखा था।
1: जो मुझे निचली कतार में बिठाना चाहते हैं, उनसे मैं कह दूं कि मेरी जगह वही है धरती की गोद, इन पेड़ों इन जंगलों में, इस धूल इस पृथ्वी और तृण दल को मैंने अपना जीवन उत्सर्ग किया है, जो धरा की आत्मा के निकट हैं, जो उसी से बने और जो उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूँ, मैं कवि हूँ।
4: आज की भारतीय कविता और भारतीय काव्य मनीषा रवींद्रनाथ की कितनी ऋणी है, इस बारे में कवि आलोचक और शिक्षाविद डॉक्टर हीरालाल बाछौदिया का वक्तव्य अवश्य ही हमारा ज्ञान विस्तार करेगा। उनका कहना है,
6: रवींद्र की कविता में आध्यात्मिक चेतना और प्राकृतिक चेतना का अद्भुत समावेश है। उनमें भारतीय रहस्यवाद भी दृष्टिगोचर होता है। भारतीय कविता उनसे इस संदर्भ में पर्याप्त प्रेरणा प्राप्त करती रही है। आधुनिक कविता में भी

0: आधुनिक चेतना का संस्पर्श है और यह रविन्द्रनाथ की प्रेरणा या उनका प्रभाव भी हम कह सकते हैं। इसके साथ ही आधुनिक जो कविता है उसमें बौद्धिक परिवेश पर्याप्त मात्रा में है, इसकी प्रेरणा भी रविन्द्रनाथ से प्राप्त हुई है। रविन्द्र ने जितना बड़ों के लिए लिखा, जितना सामान्य पाठक के लिए लिखा, उतना ही बच्चों के लिए लिखा, ये बहुत बड़ी बात है।
1: रविन्द्रनाथ ठाकुर की विराट प्रतिभा का महत्वपूर्ण अंग रहा है संगीत, जो उनकी विपुल और विविध काव्य रचना का अंतरंग और अनिवार्य अनुषंग है। ये संगीत ही उनकी काव्य सर्जना की उत्तर जीविता का प्रमुख तत्व है। रविन्द्रनाथ के गान और गीत भाव, लय, छंद, स्वर और सुर के अद्भुत समंजन है और रविन्द्र संगीत इसका उत्कृष्ट निदर्शन है। इस बारे में बता रहे हैं प्रख्यात कवि और संपादक श्री गिरधर राठी।
2: 21 साल पहले मैं बहुत से कवियों के साथ, बांग्ला के कवि थे और दूसरी भारतीय भाषाओं के, शांति निकेतन से हावड़ा लौट रहे थे हम लोग रेल से, तो वहाँ शक्ति चट्टोपाध्याय और सुनील गंगोपाध्याय और ये सब लोग थे। तो सुनील दास से मैंने पूछा कि देखिए 1960-70 के दशक में आप लोगों ने तो रविन्द्रनाथ ठाकुर का इतना ज्यादा विरोध किया था, वो हंगरी जनरेशन, भूखी पीढ़ी नाम से एक पूरा आंदोलन चला था और इतना तिरस्कार उनका किया था, अब आप क्या सोचते हैं? तो उन्होंने कहा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के गीत अमर हैं। तो ये बात सही है, क्योंकि जैसे कोई भी प्रसंग हो, सुबह शाम दोपहर हो, कोई मौसम हो, किसी तरह का हर्ष विषाद का प्रसंग हो, तो उस हर प्रसंग के लिए रविन्द्रनाथ ठाकुर के पास गीत मौजूद हैं। हर उम्र में, हर समय और हर प्रसंग में उनको याद किया जा सकता है।
3: रविन्द्र संगीत की विशिष्टता पर ही नेशनल बुक ट्रस्ट के पूर्व निदेशक और प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर वर्षा दास का ये कहना है।
4: कई लोग ऐसी टिप्पणी भी करते हैं कि रविन्द्रनाथ के गीतों में एक रसता है, यानी कि स्वर कुछ एक से लगते हैं जिससे कि बोरियत होती है, लेकिन अगर हम देखें उनके विषयों का वैविध्य और ये गीत कब कब रचे गए, किन किन विषयों पे रचे गए, जैसे कि नाटक में गीत आते हैं तो वो उस काल के लिए और उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रख के और जो चरित्र उसका गान करता है उसको भी ध्यान में रख के स्वर नियोजन किया गया है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने, जैसा कि मैंने अभी बताया था, कि शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, पाश्चात्य संगीत, इन सभी से वो प्रभावित थे और सभी का उन्होंने अपने संगीत में उपयोग किया है। तो उसमें ऋतुओं पे जो गीत लिखे हैं और उनको जो स्वर दिए हैं वो ही देखें, तो ग्रीष्म ऋतु का जो गीत है उसमें एक पीड़ा दिखाई देती है कि वो उसकी गर्मी सहन नहीं कर पा रहा और वो पीड़ा उसके शब्दों में भी है और उसके स्वर में भी है। लेकिन आप वर्षा ऋतु का गीत देखें तो उसमें बादलों की गड़गड़ाहट, वो रिमझिम रिमझिम जो वर्षा होती है और उससे मनुष्य के भीतर जो भाव उमड़ते हैं, ये सारा उनके स्वरों में पाया जाता है। इसी प्रकार के भावों से जुड़े स्वरों के कारण और गीतों के शब्द, उसके अर्थ, उसकी लय, इन सभी के कारण रवि

0: में शांति निकेतन आश्रम और बाद में विश्व भारती की स्थापना द्वारा नई पीढ़ी को जिस तरह संपूर्ण बनाने की शिक्षा देने का सर्वथा नया उपक्रम किया था।
1: रवींद्रनाथ का शांति निकेतन इतने वर्षों के बाद अपने उद्देश्यों के पालन में कितना सफल रहा है, इस पर हिंदी भवन विश्व भारती शांति निकेतन के अध्यापक डॉक्टर रामेश्वर मिश्र प्रकाश डाल रहे हैं।
2: शांति निकेतन एक शिक्षण संस्था है, लेकिन यह केवल शिक्षण संस्था नहीं है। शांति निकेतन के तीन रूप हमको दिखाई पड़ते हैं। पहला रूप है 1850 के आसपास का आश्रम का रूप, जिसकी स्थापना उनके पिता ने की थी, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। दूसरा रूप शांति निकेतन का है, वह विद्यालय का रूप है। 1901 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने यहाँ विद्यालय की स्थापना की। और तीसरा रूप जो है वह विश्व भारती का रूप है, वह 1921 में इसकी स्थापना हुई और 1922 से इसका कार्य चलने लगा। प्रश्न यह उठता है कि शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने विद्यालय की स्थापना क्यों की? शिक्षा की जो शांति निकेतन में व्यवस्था की, वह बालकों के परिपूर्ण विकास की ओर उनकी दृष्टि थी कि बालक यहाँ प्रकृति के सानिध्य में रह करके शिक्षा ग्रहण करेंगे, वे केवल पुस्तकीय शिक्षा में आबद्ध नहीं रहेंगे, प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करेंगे, समाज से शिक्षा ग्रहण करेंगे, ग्रामीण जनजीवन से शिक्षा ग्रहण करेंगे और साहित्य, समाज, संस्कृति, कला, संगीत, इन सब पर उनकी, इन सब में उनकी बालकों की रुचि होगी और वे एक परिपूर्ण शिक्षा को ग्रहण करेंगे। विश्व भारती का एक द्वार भारत की ओर खुलता है और दूसरा द्वार विश्व की ओर खुलता है। प्रकार से राष्ट्र निर्माण की बात होती है और दूसरी ओर विश्व चिंतन होता है। शांति निकेतन के माध्यम से संपूर्ण विश्व को जो संदेश दिया गया, उसमें शांति निकेतन मुझे लगता है पूरी तरह सफल है।
3: আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়াই উল্লাসে কারে যাচে রে, হৃদয় আমার নাচে রে, আজকে ময়ূরের মতো নাচে রে।
0: রবীন্দ্রনাথ কি রচনাও মে ব্যঞ্জিত ইয়া অভিব্যক্ত ভারত ভাবনা ইয়া ভারতীয়তা কো ডক্টর গঙ্গা প্রসাদ বিমল কিস দৃষ্টি সে দেখতে হ্যাঁ, আইয়ে উনি সে শুনে।
4: ট্যাগোর নে ভারত কো আপনে অন্দর এক আত্মসাতিকৃত রূপ মে উপস্থিত কিয়া হ্যায়। ये भारत जो है एक तरह से वह भारत है जो सदियों से अपने लिए कुछ चीज़ें जुटाता रहा है। उनके साहित्य में निबद्ध है कि उन्होंने अपने लिए अपने समय की जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो इकट्ठा की। उन्होंने एक तरह से धार्मिक स्तर पर भी उन्होंने जो सर्वधर्म की कल्पना को साकृत करने वाली चीज़ थी उसको स्वीकार किया। गोरा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने जो कहना चाहिए कि कलाओं के बारे में जो प्रयोग किए, प्रयोग कलाओं में एकांत प्रयोग नहीं है बल्कि वो साहित्य में भी वो प्रयोग किया। उनके नाटकों को देख सकते हैं उस दृष्टि से। हम रविन्द्रनाथ ठाकुर के समूचे साहित्य विमर्श में अगर कोई चीज़ उभर करके सामने आती है तो भारत ही है। और भारत का इतना अद्भुत परिदर्शन अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। कवि के रूप में, भारतीय कथाकार के रूप में, भारतीय नाटककार के रूप में, भारतीय चित्रकार के रूप में, भारतीय संगीतकार के रूप में एक अद्वितीय बेजोड़ टैगोर जो हैं, वो सब तरफ से भारत की स्थापना करते हैं।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर कवि होने के साथ समकालीन चित्रकला के अनूठे चितेरे भी थे।
5: रविंद्रनाथ के चित्रों की अगर बात करें तो उन्होंने चित्रों का प्रारंभ चित्रकला करने के लिए नहीं किया था।
0: आप हैं नेशनल बुक ट्रस्ट की पूर्व निदेशक और प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर वर्षा दास।
5: वे जब कुछ लिखते थे, चाहे वो कविता हो, गद्य हो, तो उसमें कभी कभी काट छांट होती थी, कुछ शब्द काट लेते थे, कुछ पंक्तियां काट लेते थे। तो फिर वो कहते थे कि मेरे चित्रों का प्रारंभ कोई अनुशासनबद्ध शिक्षा में नहीं हुआ या किसी परंपरा में भी नहीं हुआ, वो तो पांडुलिपि में रद्द किए गए भाग जब एक पापी की तरह अपनी मुक्ति के लिए कल्पांत करने लगे, रोने लगे, तो फिर क्या हुआ, मेरी आंखों पर उनकी असंगत कुरूपता से आक्रमण करने लगे, तो मैं फिर अपना स्वाभाविक कार्य छोड़कर उनको मोक्ष देने की ओर मुड़ जाता था।

0: यानी कि वो जो अपना लिखना होता था उसको छोड़ देते थे और इस कटे हुए हिस्से को एक लयात्मक ध्यानीय मोक्ष की ओर ले जाते थे। ये जो काट छाट थी वो असुंदर ना लगे इसलिए रविन्द्रनाथ उसे कुछ आकार देते थे। तो इसमें हम देखते हैं कि कहीं पे कोई पक्षी बन गया है, तो कहीं पे कोई पेड़ बन गया है, कोई फूल बन गया है। और जब उस समय के एक आलोचक, विदेशी आलोचक थे W.G. Archer, उन्होंने कहा कि भारत की प्रथम आधुनिक कला रविंद्रनाथ में देखी जाती है। और उन्होंने तो रविंद्रनाथ को पाश्चात्य शैली को अपनाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार भी बताया है। बाद में रविंद्रनाथ ने और बहुत सारे चित्र किए, वे कागज और स्याही से चित्र करते थे, तैल रंगों का उपयोग नहीं करते थे। और ये उनकी शैली, उनकी इतनी व्यक्तिगत और लाक्षणिक शैली थी कि दूसरा कोई भी कलाकार उसका अनुकरण नहीं कर सकता। तो इसलिए तकनीकी दृष्टि से चाहे कुछ भी हो, पर ये कला एक विशिष्ट प्रकार की कला रही।
1: रविंद्रनाथ ठाकुर आज भी तेजी से बदलते जा रहे समाज और इस कृतज्ञ राष्ट्र की सामूहिक चेतना में विद्यमान हैं।
2: उन जैसा कोई अकेला प्रतिभावान व्यक्तित्व हमारे साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य में नहीं है, जिसने भारतीय महाद्वीप के सामासिक जीवन का इतने सुविस्तृत फलक पर प्रतिनिधित्व किया हो।
1: उनकी बहुमुखी प्रतिभा सचमुच आश्चर्य में डाल देती है। वो एक उत्कृष्ट कवि थे, एक विशिष्ट कथाकार और नाटककार थे, एक अभिनव संगीतकार और अप्रतिम चित्रकार थे, साथ ही विलक्षण गद्य शैलीकार थे।
2: वे एक महान शिक्षाविद, चिंतक और सुयोग्य समाज चेता भी थे। अपनी रचनात्मक क्षमता और व्यावहारिक ऊर्जा दोनों ही प्रकार के कार्यकलापों को उन्होंने समग्र तौर पर व्यवस्थित और समन्वित जीवन दर्शन से समृद्ध किया।
3: तब मन रखो

একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ প্রাতে মনে রাখি।

0: विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर। इस रूपक का अभी आप पुनः प्रसारण सुन रहे थे। आलेख डॉक्टर रंजीत साह का था और प्रस्तुति विनोद कुमार की थी।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है सुबह 11 से 11:30 बजे तक।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
0: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र FM 102.6 MHz पर सुबह के 9 बजने को हैं। आपसे थोड़ी देर में मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: सफर।
1: जुबिन नौटियाल की आवाज में आंखों की गुस्ताखियां फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार और संगीतकार थे विशाल मिश्रा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: फिर से आपका स्वागत है बहुत बहुत चित्रलोक कार्यक्रम में।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
2: आजा शाम होने आई।
0: चित्रलोक कार्यक्रम में आपको आप सुनवा रहे हैं सत्यमेव जयते 2 फिल्म का गाना। ज़ारा अस्खान और जास मानक की आवाज़ें हैं। गीतकार हैं तनिष्क बख्श।

सत्यमेव जयते 2 फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों में उदारता, सहानुभूति, मदद और निस्वार्थ भाव से सेवा की भावना को मजबूत करना, बढ़ावा देना है। ये दिन रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े उन लोगों को के सम्मान को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और संकट के समय बिना किसी भेदभाव के लोगों की सहायता करते हैं। सभी के लिए ये दिन मानवता के प्रति अपने जिम्मेदारी समझने का भी संदेश देता है। लोगों को चाहिए कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आएं, रक्तदान के प्रति जागरूक हों और संकट के समय एक दूसरे का सहारा बनें। कई बार किसी के लिए हमारी छोटी सी मदद, छोटी सी सहायता बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। चित्रलोक कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं ये धड़क 2 फिल्म का गीत है।

0: श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की आवाजों में रश्मि बिराग का लिखा गीत आप सुन रहे थे। धड़क टू फिल्म का नाम था। आप सुन रहे हैं इस समय चित्रलोक कार्यक्रम।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
5: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
4: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
5: चलो चले मितवा।
4: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए विविध भारती के सदस्यों के साथ। वॉक कीजिए
6: चलते चलते
4: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
5: आजा शाम होने आई।
0: आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। 9:15 और समय है एक और ब्रेक का।

ब्रेक के बाद फिर स्वागत। अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाजों में आर राजकुमार फिल्म का ये गीत।

आर राजकुमार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की थीं। गीतकार थे नीलेश मिश्रा और स्वानंद किरकिरे, दोनों ने इस गीत को मिलकर लिखा। आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम इस समय। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 8 मई से मनाया जाता है। ये सप्ताह सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। लोगों को चाहिए कि वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें, हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग करें और ट्रैफिक संकेतों का पालन करें। पैदल चलते हुए इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी ना चलाना और लाल बत्ती पर रुक जाना, इन सभी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। कई बार लोग ये कहते हैं और सोचते हैं कि घर तो पास ही है, लेकिन दुर्घटनाएँ दूरी देख कर नहीं होते, इसलिए ध्यान अति आवश्यक है आप कहीं भी रहें। और

0: शांतनु मोइत्रा परिणीता फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
3: चलते चलते
1: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।

ऋत्विक तराशिलकर और साथियों की आवाज़ों में मलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आप स्वस्थ और समृद्ध रहिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।
1: बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ

है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों

की दुनिया में ली गई, वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968 प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

0: कदम।
1: हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे। जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ में लेकर उन्होंने बनाई फिल्म मेला।
2: दुख है मेलन के साथी मेरे आरे,

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समाधि।

0: इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ।
2: मतलब कब बात बोलूं साहब?

0: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।
1: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम

0: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
1: सिकंदर का
2: मैं आऊं विशाल।
1: पंडित जी शुरू कीजिए।
3: मंगलम भगवान
1: अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ।
3: वस्त्र कंधे पर रख
4: सिकंदर। क्या हुआ तुझे? कुछ दिनों मेरे यार चरण से झड़प हो गई। किससे हुई? मैं किससे हुई?
5: नहीं बताती हूँ।
4: नहीं
5: दिलावर मुझे उठाकर ले गया था। सिकंदर मुझे बचाकर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं इस दुनिया में नहीं होता।
4: बस बस करो मेम साहब।
1: मेम साहब
4: क्या काम नहीं तेरी मेम साहब है जिससे तू?
1: नहीं
5: मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को करता।
4: नहीं नहीं
5: सिकंदर

0: मुझे कहने दो, आज मुझे कहने दो विशाल, सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
1: सिकंदर ये तुमने क्या किया, क्या?
2: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
0: तुम?
3: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा, जानती हो लावारिस क्या होता है?
4: मेम साहब, लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए, मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना, और गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
2: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थी। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया, एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।
5: वादा कर

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरू राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गईं उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है, और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

0: आदिवासी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव डीटीएच ऑडियो चैनल साथ ही न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में हुआ हमारा अगला कार्यक्रम। लीजिए प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्र, वाचन स्वर दीपा सिंह। सीधी जिले में इन दिनों एक साथ कई बदलाव और गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मौसम के बदलते तेवर, प्रशासनिक सक्रियता, सामाजिक अभियानों की रफ्तार, महिला सशक्तिकरण की पहल, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम, सभी मिलकर जिले की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। मई माह की शुरुआत इस बार सामान्य वर्षों की तुलना में अलग रही। जहां आमतौर पर इस समय तेज गर्मी का असर देखने को मिलता है, वहीं इस बार आंधी और बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश ने किसानों के चिंताएं बढ़ा दी हैं।

उधर उपार्जन केंद्रों और समितियों में रखे अनाज पर भी इस मौसम का असर देखने को मिला है। प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित अधिकारियों और समितियों को निर्देश जारी किए कि अनाज को सुरक्षित रखने के लिए समुचित प्रबंध किए हैं। जिले में गेहूं उपार्जन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। हजारों किसान स्लॉट बुकिंग के माध्यम से अपनी उपज बेच रहे हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सैटेलाइट सत्यापन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। उपार्जन केंद्रों पर पेयजल, बैठने की व्यवस्था, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके साथ ही चना, मसूर और सरसों जैसी अन्य फसलों के लिए भी उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। जिले में सेवा और मानवता के संदेश को मजबूत करने के लिए इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा रेडक्रॉस सप्ताह मनाया जा रहा है। 2 मई से 8 मई तक चल रहे सप्ताह के दौरान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को आपदा के समय सजग रहने और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा दी गई। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को बताया कि कठिन समय में संयम और जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। रेडक्रॉस के इस अभियान के तहत शासकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के लिए प्राथमिक उपचार और CPR प्रशिक्षण का आयोजन भी किया गया। जिले में स्वच्छता को लेकर भी एक सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से शहर में रंगोली अभियान आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने भाग लिया। इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने साबित कर दिया है कि स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी है। स्वच्छता अभियान को और मजबूती देने के लिए जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। विधायक रीति पाठक ने रात्रिकालीन सफाई अभियान में स्वयं श्रमदान कर एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की और लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। प्रशासनिक स्तर पर जनगणना अभियान को लेकर भी विशेष सक्रियता दिखाई दे रही है। कलेक्टर ने स्वयं मैदान में उतरकर जनगणना कार्य में भाग लिया। उन्होंने एक परिवार के घर पहुंचकर न केवल प्रक्रिया का अवलोकन किया बल्कि लोगों को सही जानकारी देने का महत्व भी समझाया। जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि भविष्य की योजनाओं का आधार होती है। इसी कारण प्रशासन इस कार्य को पूरी पारदर्शिता और सटीकता के साथ संपन्न कराने के लिए प्रयासरत है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी जिले में उल्लेखनीय पहल की जा रही है। चुरहट में आयोजित अवनी कार्यक्रम ने महिलाओं को एक सशक्त मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन में स्वास्थ्य, पोषण और आत्मनिर्भरता से जुड़े विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया। महिलाओं और किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उन्हें पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। शिक्षा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम में क्रिएटिव गतिविधियां भी आयोजित की गई, जहां छात्राओं ने चित्रकला के माध्यम से अपने सपनों और भविष्य की कल्पनाओं को प्रस्तुत किया। ये पहल न केवल उनकी प्रतिभा को मंच देती है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। समग्र रूप से देखा जाए तो सीधी जिले में विकास, जागरूकता और जनभागीदारी का संतुलित स्वरूप दिखाई दे रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और कृषि, इन सभी क्षेत्रों में हो रहे प्रयास ये संकेत देते हैं कि सीधी जिला निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसर है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्र का था और वाचन स्वर था दीपा सिंह का।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओ, आपने अपने रेडियो सेट पर चुना है अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिस पर आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। और आइए इस कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवाते हैं ये कव्वाली मास्टर हबीब निजामी की आवाज में। इस कव्वाली को संगीतबद्ध किया है अजीज नाजा ने।

और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता यहीं पर संपन्न होता है। यह आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। हम आपको बता दें, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है श्रोताओं के फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद।

0: कार्यक्रम आपकी पसंद का ये पहला गीत अभी आपने सुना। अलका याग्निक और उदित नारायण और उनके साथियों की आवाजों में गीत को लिखा था इंदिवर ने, संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने और फिल्म का नाम था कोयला। और फरमाइश आप सभी लोगों की थी। ये पत्र हमें मिला है कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। साथ ही हमें कुछ व्हाट्सएप भी मिले हैं जो कि जिला मोती बिहार से नंद कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह, बेगूसराय बिहार से संदीप सिंह, संजय कुमार सिंह, मालियान सरधना मेरठ उत्तर प्रदेश से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन और जैन साहब, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, साथ ही मलकापुर से नारायण इंगले और आशीष मोहरकर।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक, समय होता है सुबह 11 से 11:30 बजे तक।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: हम आपको बता दें ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए कार्यक्रम आपकी पसंद, जिसमें हम आपकी पसंद के कुछ फिल्मी गीत सुनवा रहे हैं। और आइए अब जो गीत हमने चुना है अंदाज फिल्म का, ये गीत है आशा भोसले, मोहम्मद रफी और उनके साथियों की आवाजों में है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का ये संगीत है और पसंद करने वाले आप सभी लोग हैं। ये हमें पत्र मिला है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ, ये व्हाट्सएप है। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा पीहू स्वर्णकार, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल निशा। और ये पत्र में मिला है मोटर टक्का माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और इनके परिवार से हैं मन पटेल।

श्रोताओ, आप अपने रेडियो सेट पर सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, जिसमें हम आपकी पसंद के कुछ फिल्मी गीत सुनवा रहे हैं। और आइए देखिए, ये जो पत्र हमें मिले हैं, जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल,

शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल और मुकाम पोस्ट बोरी खुर्द से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, जगुताई राजे जाधव, साक्षीताई राजे जाधव, संचित वयाड़ अरेगांव से, प्रथमेश देशमुख मोताड़ा से, कुमारी प्रणाली देशमुख मोताड़ा से और करड़ा से हमें मिला है ये पत्र, स्वामी देशमुख और कुमारी सानवी देशमुख। साथ ही ये पत्र आया है जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा बिलई सागर मध्य प्रदेश है, लक्ष्मण रेखवार, विनीता रेखवार, दीपेश वैशाली वैष्णवी, लल्लू हल्ले, ऋषि रेखवार। और एक पत्र और हमें मिला है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, आकार हाइट्स से बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली, शैलेश गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुआनी ध्वनि गवाणकर परी और बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर। आप सभी ने सुनना चाहा है चितचोर फिल्म में यशुदास की आवाज़, इस गीत को लिखा और संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने।

श्रोता हो, ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ हम आपको बता दें, न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी आप हमारे आकाशवाणी सागर का लाइव प्रसारण सुन रहे हैं। और इस वक्त आप अपने रेडियो सेट पर ट्यून किए हुए हैं, अपना मनपसंद कार्यक्रम आपकी पसंद हो रहा है। इस कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवाते हैं हमराज फिल्म में महेंद्र कपूर की आवाज। इस गीत को साहिर ने शब्द दिए हैं, रवि ने इसकी तर्ज बनाई है और पसंद करने वाले आप सभी लोग हैं। ये हमें व्हाट्सएप मिला है ग्राम मील खेड़ी तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से। धनराज बैरागी, सीमा बैरागी, किट्टू बैरागी, खुशी लक्ष्मी और रघुनाथपुरम जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हर्षित, खुशी गोस्वामी जिला किशनगंज बिहार से। रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, अनुराग, मोहन सालार पहलगाम कश्मीर से। पीरजादा मिराजुद्दीन, कैसरुद्दीन, नजमुद्दीन, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन, मयंक शर्मा, बिलाई छत्तीसगढ़ से। रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन। और ये पत्र हमें मिला है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। आप सभी ने सुनना चाहा है हमराज फिल्म में महेंद्र कपूर की ये आवाज़।

और श्रोता इसी के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं पर संपन्न होता है। हम आपको बता दें आज का ये फरमाइशी फिल्मी गीतों का सफर आपने तय किया अपने रेडियो मित्र मासूम आलम के साथ।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम एंड 102.6 MHz पर। लीजिए अब सुनिएगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
0: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
0: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
0: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
0: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं
2: जी,
0: यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
0: जी श्रोताओं, मारियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
0: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
2: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
0: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
2: जी,
0: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
2: जी।
0: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
2: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
0: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
2: जी,
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया
2: जी।
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
2: जी।
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
2: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है, जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया, आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
2: जी।
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
2: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
2: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, या पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहां कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
2: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठीमाला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युष्कल बंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के

0: एक महान शिक्षक हैं।
1: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
0: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905 अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणे बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य

0: रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
1: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
2: आमादेर शांति निकेतन,
1: सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
3: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
3: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
3: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूं। उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा,
3: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने

0: जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: उमंग ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 11:30 होने को हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी

0: इसी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर,
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।

पंकज उदास की आवाज आपने सुनी। शब्दकार जफर गोरखपुरी, संगीत पंकज उदास का, एल्बम लाइफ स्टोरी। रंग तरंग।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश अदनान सामी की आवाज मकबूल ख्वाजा के बोल संगीत अदनान सामी का एल्बम किसी दिन।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 वैशाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदास कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन TARA हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने TARA हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने से भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास बताया।

0: वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 15 मार्च के बाद से देश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। महानिदेशालय ने बताया कि परीक्षण किट की कमी से संकट और गहरा गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 77,418 पर जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, 8 से 12 मई तक हम मना रहे हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह। सड़क पर वाहन चलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। सड़क पर चलने के जो नियम हैं उनका पालन करें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, ये सब बातें हमारी सुरक्षा के लिए है। तो इसी विषय से जुड़े कुछ गाने हम सुनेंगे आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। पहला जो गीत है ये कूली फिल्म का गाना, शब्बीर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न।

में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। चलते चलते आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। हो सकता है आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स, कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल। अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है, अब आपको सुनवाने जा रहे हैं चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है SD बर्मन का।
1: बाजू।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

कुंवारा बाप फिल्म का ये गाना किशोर कुमार महमूद और साथियों की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना।

0: समाचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मेरा नाम जोकर। इस फिल्म का गाना मन्ना डे की आवाज में, नीरज के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है।

क्या ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो आ

गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तू जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या

0: ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: चाहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: यह है जीत फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अकेली लड़की दिल कैसे कोई संभाले।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना खुद्दार फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में बोल मजरू सुल्तानपुरी के संगीत है राजेश रोशन का।

भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल और संगीत अनु मलिक का। इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

दोस्तों नमस्कार, सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। दोस्तों विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपने आज की इबारत यानी कि आज जो टेक्स्ट हमने भेजा है वो तो आपने पढ़ ही लिया है और इससे संबंधित बहुत सारी बातें भी आपने हमें लिख भेजी है, उससे पता चलता है कि कितने शिद्दत से आपने उसे पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आपको इसे पढ़ करके सुना देते हैं। शादियों का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया कि ऐसे में सजना संवरना तो बनता है, अगर चंद्रहार मिल जाए तो सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा। शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान और मौज मस्ती होगी, दुल्हा दुल्हन रस्म रिवाजों के बंधन में बंध जाएंगे, फिर दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा होगी। आधी रात जब चंद्रमा आधा होगा तो बातें होंगी, दिन प्यार करने के होंगे और प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नज़रों में सबसे न्यारा होगा। ये आज का जो टेक्स्ट है हमने प्रेषित किया, आपने पढ़ा और नहीं पढ़ा तो हमने आपको पढ़ के सुना दिया और जिन शब्दों के गाने हमने शामिल किए उन पर थोड़ा सा हमने जोर भी देकर के पढ़ा है ताकि आपको समझ में आ जाए। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सुरीला सफ़र में एक बात तो है जो बांधे रखता है और वो ये है कि आपका गाना बजे या ना बजे एक्साइटमेंट बरकरार रहती है, आपकी बातें भी हमें बांधे रखती है और आज के गाने मुझे लगता है शादियों की नोकझोंक से भरे होंगे। एक साथी हमारी ये भी लिख रही है कि शहनाइयों की गूंज बता रही कि खुशियों ने दस्तक दे दी है और ऐसे में अगर खनकती चूड़ियों के साथ माथे पर बिंदिया सज जाए तो महफिल में चार चांद लगना तय है, बारातियों के स्वागत में हंसी छिटोली होगी, पकवानों की खुशबू से आंगन महकेगा और फेरों के वक्त जब सात वचनों की गूंज होगी तो हर आंख में दुआओं का समंदर होगा, विदाई की उस घड़ी में बाबुल की लाडली जब नए सफर पर निकलेगी तो यादों का कारवां साथ होगा, फिर तारों भरी वो पहली रात होगी, मीठी बातों के सिलसिले होंगे और शुरू होगा एक ऐसा सफर जिसमें दो दिल मिलकर अपने सपनों का आशियाना सजाएंगे। जी हाँ, कुछ हद तक आपकी ये बातें ठीक है लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी गाने जुड़ते चले जाएंगे। अब वो कौन से गाने हैं ये आपने कुछ लोगों ने अनुमान लगा भी लिया है तो चलिए सुनते हैं आपके और हमारे गानों के बीच कितना मेलजोल होता है। लेकिन इसी बीच हम आपसे कुछ बातें भी पूछना चाहते हैं कि जब आप किसी शादी समारोह में जाते हैं तो बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव वहाँ पर होते हैं, कुछ हंसी ठिठोली होती है, कुछ ऐसी शरारत हो जाती है जो ताउम्र हमें याद रहती है, तो आप किसी शादी समारोह में गए कुछ ऐसी बात हो गई जो अनोखी लगती है या जिनको सालों बाद भी उस बात को याद करते हुए आपके मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है या हंसी आ जाती है या ठहाका लगाने पर मजबूर हो जाते हैं, ऐसा कोई अनुभव हो तो वो आप हमें लिख भेजिए। फिलहाल हम आपको सौतन फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, सावन कुमार का लिखा हुआ ये गाना है, संगीत किसका है ये आपको बताना है। हमने आपसे कहा था कि शादियों का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया, सुनिए ख्याल।

इसके संगीतकार हैं उषा खन्ना। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि अरे वाह, एकदम ठीक शुरुआत। शादियों से पहले शादी का ख्याल तो आता ही है ना, तभी तो उसके बाद ही बात आगे बढ़ती है। लेकिन इसी के साथ एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि भाई शादियों का मौसम चल रहा है तो ये अब शादी का ख्याल कहाँ से आया, चाय की बात कहाँ से आई, वो तो पहले ही हो चुकी है। जी हाँ, इन बातों को हमें एक डोर में बांधना होता है और इसीलिए इन शब्दों को जोड़ करके गाने बनाए जाते हैं, तो ऐसी बातें होती है। चलिए, एक साथी लिख रहे हैं कि शादी जैसे शुभ अवसर पर सजना संवरना उत्सव की भव्यता बढ़ाता है और सामाजिक मान्यताओं को मजबूत करता है। दुल्हन का श्रृंगार परिवार में लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है जो विवाह को पवित्र बनाती है। शादी में सजना संवरना भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है जो न केवल सौंदर्य बढ़ाता है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बढ़ाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि शादी, दुल्हन, श्रृंगार, कपड़े, खासकर जेवर सिर्फ सजावट नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होते हैं। निश्चित रूप से दुल्हन की शोभा बढ़ाते हैं और उसे सबसे अलग और खास लुक देते हैं। भारतीय शादियों में दुल्हन के लिए आवश्यक पारंपरिक जेवर होती है। गले में भारी और कलात्मक हार जैसे कुंदन, पोलकी या टेम्पल ज्वेलरी दुल्हन के मुख्य आकर्षण होते हैं। मांग टीका या माथा पट्टी माथे पर पहना जाता है जो चेहरे की सुंदरता को दोगुना कर देता है। लेकिन हमने आपसे ये कहा कि कहीं आप शादी में गए, वहाँ का कोई रोचक अनुभव हो तो वो हमसे साझा कीजिए। उसके बाद दो सवाल और हैं हमारे, तो वो भी हम आपसे पूछेंगे। अब हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। ख्याल आया और ख्याल क्या आया, ऐसे में सजना संवरना तो बनता है। चलिए, सौदागर फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज़, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही हैं ये आप हमें बताइए।

अभिनेत्री पद्मा खन्ना पर फिल्माया गया ये गाना है। साथियों के कमेंट्स आने लग गए हैं कि शादी ब्याह में जब वो जाते हैं तो कौन सी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें हंसा देती है या मन को एक यूं कहते हैं ना खुशी से भर देती। तो एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी शादी आखिरी लगन जुलाई में हुई थी। उस समय बाराती 2 दिन का प्रवास करता था, मूसलाधार बारिश में छाता पकड़ फेरे लिए थे। जो आज भी तस्वीर देखते हैं तो

याद आता है बरसात में तुमसे मिले हम सनम, आज 38 बरस हो गए विवाह को, किंतु वो बरसात में फेरे लेना आज भी याद है। एक साथी लिख रहे कि उस समय शादी समारोह के भोजन में खाना परोसते थे, बूफे सिस्टम नहीं था, मुझे लाल कद्दू की साग पसंद नहीं है तो मैंने वो पहले ख़त्म कर दी। उन्हें लगा कि मुझे साग बहुत पसंद आई और वो बार बार परोसते रहे और मैं ज़बरदस्ती खाती रही। पकवान लड्डू तो दूर ही रह गए, क्या करें, उस वक्त उम्र छोटी थी, समझ नहीं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि शादी का मौसम चल रहा है, 1 मई 2026 को हमारे पड़ोसी के बेटे की शादी थी अजमेर में एक होटल के ग्राउंड में। बारात आ गई, दूल्हा स्टेज पर पहुंच गया, दुल्हन भी स्टेज पर पहुंच गई, वरमाला की रस्म कंप्लीट हुई थी कि अचानक तेज बारिश हो गई और घर के सदस्य और गेस्ट भी गीले हो गए। महिलाएं जो सच सवर के आई थी, तेज बारिश के कारण मेकअप खराब हो गया और मैं स्वयं और धर्म पत्नी भी गीले हो गए। तो इस तरह से ये जो समारोह है थोड़ा सा गड़बड़ा गया। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक रिश्तेदार की शादी में स्टार्टर और कुछ खाने की चीज़ें देने वाले वेटर घूम रहे थे, सबको दे रहे थे। मेरे पास आकर एक प्लेट मुझे दी, मैंने उसे एक कोने में ले जाकर उसे ही खाने को कहा। साथ में ये भी कहा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आप सबको रात 12 बजे के बाद आपको खाना मिलेगा तो आप पहले खा लो। वो मना करने लगा कि कोई देख लेगा। मैंने मेरी जिम्मेदारी पर उसे खाना खिला ही दिया। उनको ये बात बहुत अच्छी लगी और कहने लगे कि कोई भी ऐसा हमारे बारे में नहीं सोचता है। जी, आपकी सोच बहुत हमें भी पसंद आई कि आपने दूसरों के बारे में पहले सोचा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो टेक्स्ट है उसकी अगली लाइन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर चंद्र हार मिल जाए तो सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा। इसमें दो गाने छुपे हुए हैं। तो पहला जो गीत है यानी कि चंद्रहार वाला, वो ये है। लता जी की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, साधना और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना है। फिल्म कौन सी है ये आप हमें बताइए।

ये जो गाना आपने सुना गबन फिल्म का ये गाना है। एक साथी लिखते हैं कि शादी ब्याह के बाद छेड़ते ही गहनों की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है, और उस पर कोई दुल्हन चंद्रहार पहन ले तो उसके सौंदर्य के आगे तो चांद भी शर्मा जाता है। एक हमारी साथी ने लिखा है कि शादी की एक बात बहुत ही मज़ेदार जो हम कभी नहीं भूलते, हमारे भाई की शादी से पहले जब लेडीज संगीत होता है तो उसमें हमें थोड़ी मस्ती सूझी और हम बीच में से उठ करके अपने छोटे भाई की जीन्स और शर्ट और एक कैप लगाकर आकर बैठ गए। बाद में जब सबकी नज़र गई तो सब इतना हंसे और सब ने अपने साथ फोटो खिंचवाई और डांस भी किया। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि शादी का सीजन चल रहा है, अभी कुछ ही दिन पहले मैं शादी में गया था तो जहाँ भी जाता हूँ सिर्फ परोसना चालू हो जाता हूँ। ऐसे में दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा प्यार से खिलाना मुझे बहुत पसंद आता है। एक शादी में जब दोस्तों ने 10 गुलाब जामुन और 4 दोना रायता रख दिया, अब तो मुझे पीना होगा और खाना होगा, और सचमुच उन्होंने मुझे बहुत ही गहरा बना दिया। अब इसका अर्थ अंत में क्या था ये समझ में नहीं आया। इतनी बात समझ में आई कि आप सबको खिलाते थे, एक बार आप गए तो दूसरे दोस्तों ने आपको बहुत सारा खाना परोस दिया और कहा कि खाना ही पड़ेगा, तब आपको समझ में आया कि ज़्यादा खाना किसी को खिलाने से क्या होता है। चलिए, धन्यवाद आपका। अब हम अगली बात आपसे पूछना चाहते हैं कि जब हम या कोई भी बाराती बनकर जाते हैं तो हमारा व्यवहार कितना संयमित होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जो बाराती आते हैं तो शादी ब्याह में वो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं जो कि पूरी नहीं कर पाते हैं घराती, या फिर बहुत हुड़दंग करते हैं तो उससे भी व्यवधान आता है, या कोई असंयमित व्यवहार करते हैं तो भी शादी समारोह की शोभा जो है वो कम हो जाती है। तो किस तरह का व्यवहार बारातियों को करना चाहिए, कितना संयम रखना चाहिए, इस बारे में भी हम आपके विचार जानना चाहते हैं। अगला गाना, सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा, अर्धांगिनी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है बताइए हमें।

अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माया गया गाना है। साथ ही हमारे लिखते हैं कि जिसे विवाह या परिणय सूत्र भी कहा जाता है, शादी ये मानव समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र स्तंभ है। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों, संस्कृतियों और विचारधाराओं का संगम है। भारतीय परिवेश में तो शादी को सात जन्मों का बंधन माना जाता है जो इसकी गहराई और गंभीरता को दर्शाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज मंजू जी बड़ी सहजता और सरलता से धीरे धीरे बात करते हुए इस शादी के सफर को पूरा कर रही है और हम सब बाराती बनकर इस शादी में जरूर शामिल हो रहे हैं। हाँ, कोई ढोलक बजाएगा, कोई गीत गाएगा, कोई दुआएं देगा, कोई मस्ती करेगा, अभी बात खत्म नहीं हुई है और ये बात और भी आगे बढ़ेगी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मेरी शादी को इसी महीने 28 मई को 40 साल पूरे हो जाएंगे। शादी शाम को 6:45 पर थी। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बारात में नाचना था, किंतु मेरे बड़े भैया ने बारात को शॉर्टकट से ले जाकर मंडप में पहुंचा दी और कह रहे थे शादी का मुहूर्त निकल जाएगा और सब नाराज हो गए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि ये 80 के दशक की बात है। मेरे गांव में दो जुड़वा बहनों की शादी थी। सब रीति रिवाज बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई। विदाई के समय में घर परिवार वाले रोने धोने लगे हुए थे और इसी गहमी में रिश्तेदारों ने दोनों कन्याओं की विदाई करवा दी। बारात अलग अलग गाँव से आई थी। बाद में पता चला दोनों दुल्हनों के ससुराल में अदला बदली हो गई है। फिर आनन फानन में उनके सही घर में उन्हें पहुँचाया गया। आज भी वो घटना याद करके वहाँ के जो निवासी है वो हंसने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात आगे बढ़ती है कि दोस्तों के बीच जो हमने आपसे टेक्स्ट जो लिखा है उसके बारे में कि शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान और मौज मस्ती होगी। तो इन्हीं बातों पर जो गाना है आपकी खातिर, इस फिल्म का गाना है। शैली शैलेंद्र की आवाज़, बप्पी लाहिरी का संगीत, विनोद खन्ना, रेखा और साथियों पर फिल्माया गया ये गाना है। आवाज़ किसकी है ये आपको पहचानना है।

0: वैसे आया मेरा दोस्त
1: hey, hey!
0: दोस्त को सलाम करो
1: hey, hey!
0: रात को खाओ पियो
1: hey, hey!
0: दिन को आराम करो
1: hey, hey!
2: बम्बई से

तो दोस्तों की बातें हो गई। एक हमारे साथी की बात अब आपको पढ़ के सुनाते हैं। लिखते हैं कि बारात का उद्देश्य केवल खाना पीना और नाचना नहीं है, बल्कि एक नए रिश्ते की गवाही देना है। रस्मों के दौरान शांति बनाए रखना और वधु पक्ष की भावनाओं को समझना जरूरी है, विशेषकर विदाई के समय। जब एक परिवार अपनी बेटी को विदा कर रहा होता है, बारातियों का व्यवहार अत्यंत संवेदनशील और धैर्यपूर्ण होना चाहिए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय होता है, ये बात हर बाराती को ध्यान में रखना चाहिए। एक साथी लिखा है कि हमारे यहाँ दूल्हे का कान पकड़ने की रस्म होती है, जिसमें 7 फेरों के बाद दुल्हन का भाई दूल्हे का कान पकड़ के रखता है और जब तक उसका नेक नहीं मिलता तब तक पकड़ कर रखता है। हम सब जब भी मेरे भाई की शादी की सीडी देखते हैं तो यह सब रस्में देखकर बहुत ही हंसी आती है। एक साथी लिखते हैं कि 11 मार्च 1992 को गंगानगर जिला संगरिया में रात 10 बजे ठीक खाने के समय ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उड़ा के ले गया, शादी का मजा किरकिरा हो गया। एक साथी लिखते हैं कि दीदी आपका एक सवाल बहुत अच्छा है। हाल ही में अपने भतीजे की शादी में गई थी, लड़की वालों ने जूती चुराई की रस्म में मुंह खोलकर पैसे मांगे, जो होना नहीं चाहिए। रस्मों को तोड़ मरोड़ कर अपनी मांग पूरी करना ये गलत बात है। जूते चुराई में बहुत झगड़ा और झंझट हुआ था। तो भाई शादी ब्याह का जो कार्य होता है सबके लिए एक अत्यंत शुभ और खुशी का मौका होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, दूल्हा दुल्हन रस्मों रिवाजों के बंधन में बंध जाते हैं, ये हमारी बात है, टेक्स्ट में लिखी हुई बात। चलिए इसी पर एक गाना सुनवाते हैं, मोम की गुड़िया। इस फिल्म का गाना लता जी की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

अभिनेत्री तनुजा पर फिल्माया गया एक ये गाना आपने सुना। एक साथी लिखते हैं, जिस पिता की बेटी पराया घर जाने वाली है उस पिता को बहुत दर्द होता है क्योंकि उसने फूलों की तरह उसे प्यार किया है। उस पिता ने अपने जीवन भर की कमाई अपनी बेटी के दहेज में दे दी है। फिर हम बारात लेकर जाते हैं। एक मर्यादा, सहनशीलता और अनुशासन ढंग से हमें बारात में जाना चाहिए और दोनों परिवार और प्रेम और स्नेह का आशीर्वाद देना चाहिए। यहाँ अभी अगला जो गाना है हम आपको सुनवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे क्या सीख देनी चाहिए, ये आप हमें लिख करके भेजिए। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि हाँ, ये जो गीत है इसके बारे में मैंने सोचा तो था, यानी जो अभी मोम की गुड़िया फिल्म का गाना, लेकिन उसके बारे में हमने लिखा नहीं, पर पसंद है गाना और आपने सुनवा दिया। एक साथी लिख रहे हैं कि बारात का उद्देश्य एंजॉयमेंट करना ही नहीं है, बाराती घराती को बहुत तंग भी करते हैं और जिसे कभी कभी माहौल बहुत ख़राब भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने ज़माने में नीचे बैठकर यानी पंगत में खाने में तो मज़ा आता है, बूफे में नहीं आता है। वहीं अब शादियों में बूफे के बदले टेबल कुर्सियों पर बिठा कर खाना परोसा जाता है, ये बदलाव काफ़ी अच्छा और सफल भी हो रहा है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि समय धीरे धीरे बदल रहा है, हमारे भारत के कई शहरों में और कुछ समाजों में यह सख्त फैसला लिया गया है कि शादी में निश्चित प्रकार के व्यंजन ही बनाए जाएंगे और खिलाए जाएंगे ताकि व्यंजन व्यर्थ ना जाए और दुल्हा दुल्हन के माता पिता पर खर्च का बोझ ना पड़े, अन्य फिजूल खर्चों को भी रोका जाए। मेरी प्रभु परमेश्वर

ईश्वर से ये प्रार्थना है कि हमारे संपूर्ण देश में सभी समाजों में ये निर्णय लेना चाहिए। चलिए अब हम अपने टेक्स्ट की बात को आगे बढ़ाते हैं कि दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा हो जाती है। नीलकमल फिल्म का ये गाना अब आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, साहिल उद्यानवी के बोल, संगीत किसका है ये आपको बताना है। साथ ही आप हमें ये भी लिख करके भेजिए कि बेटी को विदाई के समय क्या सीख देनी चाहिए।

नीलकमल फिल्म का गाना आपने सुना, संगीत रवि का। जब भी ये गाना सुनते हैं तो हाथ कंप कपा जाते हैं और आंखें नम तो हो ही जाती है, मुझे ऐसा लगता है, आप बताइएगा। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मंजरी, जब मेरी बेटी पैदा हो रही थी ये गाना बज रहा था, आज याद आ गई और मैं रोने लगी हूँ। जिस बेटी को हम बड़े प्यार से पालते हैं उसे एक ही झटके में दूसरे को सौंप देते हैं, ये

0: बात एक माँ बाप से बेहतर और कौन जान सकता है उस दर्द को या उस तकलीफ को। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल तो लड़कियां खुद ब खुद सब सीख लेती हैं, माँ की सीख यदि मान ले तो ये जो घर आजकल टूट रहे हैं ये टूटने से बच जाए। लेकिन ये सीख की अगर हम बात करते हैं तो क्या केवल लड़कियों के लिए सीख होती है? लड़कों के लिए भी तो बहुत सीख होती है, लड़के वालों के लिए भी तो बहुत सारी सीख होती है, तो उन बातों पर भी हमें गौर करना चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी का हृदय सिंधु समान विशाल होता है, अतः सभी उठती लहरों ज्वारों और हृदयंगम कर शांत चित्त नए जीवन में प्रवेश करना चाहिए। चलिए अगला गाना हम सुनते हैं, आधी रात होगी आधी आधा चंद्रमा होगा बात आधी होगी, नवरंग फिल्म का गाना।
1: देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी ना।

नवरंग फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे कहना चाहिए कि तुम्हारी शादी हुई है, माता पिता से रिश्ता नहीं टूटा है, तुझ पे कोई भी मुश्किल आ जाए मायके के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। सचमुच ये सीख भी बच्चियों को देना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको कोई तकलीफ महसूस हो तो आप बिना झिझक यहाँ आइए, हमें बताइए, आपकी तकलीफ का समाधान ज़रूर किया जाएगा। ये विश्वास अगर उन्हें है तो वो हंसते हंसते उस घर से विदा हो जाती है। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि बेटी को विदा करते समय माता पिता को उसे धैर्य, सहनशीलता और समझदारी से काम लेने की सीख देनी चाहिए। ससुराल में नए रिश्तों का सम्मान करने, मीठी वाणी बोलने और घर के काम में आत्मनिर्भर बनने की सलाह उसे देनी चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी को विदाई के अवसर पर एक ही सीख सबको समान देना चाहिए, आत्मसम्मान का भी पूरा ध्यान रखना है आपको, ये अब घर तुम्हारा है, ये सीख उसे देना चाहिए। चलिए हमारी जो अगली बात है वो ये है कि प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नज़रों में सबसे न्यारा होगा। साथ साथ फिल्म का गाना, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह की आवाज़ें, जावेद अख्तर के बोल, कुलदीप सिंह का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है आप बताइए।

आज सुरीला सफर कार्यक्रम में जिस गाने की सबसे ज्यादा चर्चा हुई या फिर लोगों को पसंद आया वो नीलकमल फिल्म का गाना। लिखते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जाए, ये गीत पिता और पुत्री के उस अनकहे और पवित्र रिश्ते की पराकाष्ठा है जहां एक पिता अपने जिगर के टुकड़े को विदा करते समय अपना कलेजा निकाल

कर रख देता है। मोहम्मद रफी साहब की दर्द भरी आवाज ने इस गाने में पिता की लाचारी, उसकी ममता और उसकी शुभकामनाओं को इस तरह पिरोया है कि आज भी यह गाना बजते ही आंखें नम हो जाती है। धन्यवाद आपका। और आज विविध भारती का ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफर, ये सुरीला सफर आपने तय किया मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। अब कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सवनिस, हिंदी अनुवाद।
1: कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
2: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और ये समय है फिल्म संगीत का कार्यक्रम का। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आनंद बख्शी ने इस गीत को शब्द बख्शी का।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में अब आप सुनने जा रहे हैं असद भोपाली के ये शब्द। आवाज़ है आशा भोसले की, फिल्म का नाम गुमराह।

और इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होने जा रहा है। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 2:10 होने जा रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। श्री मोदी ने एक अखबार में लिखे लेख में कहा कि सोमनाथ भारत की सभ्यतागत ताकत का प्रतीक है और यह मंदिर बताता है कि आस्था और संस्कृति बार बार के हमलों के बावजूद जिंदा रहती है। उन्होंने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि पटेल इस मंदिर के पुनर्निर्माण को राष्ट्रीय कर्तव्य मानते थे और अब मंदिर के गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष प्रार्थनाएं होंगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं के स्वागत के बाद श्री शाह सबसे पहले दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए और पूजा अर्चना की। कुछ ही देर में श्री शाह भाजपा के सभी 207 नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री चुना जाएगा। वहीं कल यानी 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक मामलों और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने की खुशी में भोपाल के भारत भवन में 3 दिन का मीडिया महाकुंभ चल रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास मिलकर प्रणाम उदंत मातृदंड नाम से यह समारोह 10 मई तक आयोजित कर रहे हैं। इस महाकुंभ में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और फिल्मकार डॉ चंद्र प्रकाश द्विवेदी समेत देश भर के दर्जनों वरिष्ठ पत्रकार और विद्वान इसमें शिरकत करेंगे। इस मौके पर 200 साल की पत्रकारिता की यात्रा पर एक खास प्रदर्शनी भी लगाई गई है और 8 वरिष्ठ कार्टूनिस्ट लाइव कार्टून शो भी पेश करेंगे। आकाशवाणी की सेवा के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज नई दिल्ली में 3.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक होते हुए वापस आकाशवाणी भवन पर ही खत्म हुई। इसी तरह की एक दौड़ भोपाल स्थित आकाशवाणी के दफ्तर से भी सुबह में आयोजित की गई। रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से बनी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उत्तर रेलवे के अहम रूटों पर लगाने की मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 362 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिरोजपुर डिवीजन के 1000 किलोमीटर और जम्मू डिवीजन के 446 किलोमीटर रूट पर यह सिस्टम लगाया जाएगा। कवच एक स्वदेश निर्मित स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, जो खतरे की स्थिति में ट्रेन में अपने आप ब्रेक लगाकर टक्कर और दुर्घटना को रोकती है। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली

0: स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी व पूर्वी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा और पांडुना में आज तेज आंधी के साथ ओले गिरने की प्रबल संभावना है, जिससे किसानों की फसल को नुकसान हो सकता है। मुरैना में बिजली गिरने और ग्वालियर विंध्य क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम बदलने का अनुमान है। वहीं छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा स्थित नेहरू पीजी कॉलेज में सत्र 2026-27 के लिए ई प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। वहीं छात्रों को पंजीयन दस्तावेज, सत्यापन, विषय चयन और फीस संबंधी जानकारी देने हेतु हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। नीमच में जलगंगा संवर्धन अभियान तहत ग्रामीण नल जल योजना के संचालन, संधारण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ग्राम सरपंचों, सचिवों एवं पंप ऑपरेटरों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कल आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
2: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
1: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडी

0: और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: अप्रोच टू माइग्रेशन गवर्नेंस।
4: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
3: माइग्रेशन पाथ।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
5: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
4: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
6: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
7: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
6: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
8: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
9: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
6: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी की बोल, संगीत है रवि का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आह फिल्म का गाना अब आपको सुनवाएंगे हम। लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में अब आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम पतीता।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है

0: है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मदारी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती
0: है। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब आपको सुनवाते हैं इंदिवर का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम पारस।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 ये फिल्म का नाम है। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, पीएल संतोषी का लिखा हुआ गाना और संगीत है कल्याण जी वीरजी शाह का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बड़ा भाई फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, एहसान रिजवी के बोल, संगीत नाशाद का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम हेलो सहेली, बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, हौसला हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। मुश्किलें बार बार राहें रोकती हैं, लेकिन उम्मीद की किरण लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। और हर मुश्किल हो जाती है दूर जब बातें करके मन हो जाए हल्का। और बातें करने के लिए सखियों से बेहतर और क्या है, है ना? तो बस आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए, उनका मन हल्का करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी सखी से होंगी बातें बहुत सारी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बजी फोन की घंटी और देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। आज कौन सी सखी से बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम संगीता अग्रवाल है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप संगीता जी?
1: मैं गुड़गांव मुंबई से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, मुंबई में रहती हैं आप तो?
1: हाँ जी।
0: जीवन में इन दिनों क्या चल रहा है संगीता जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ एकदम बढ़िया, जीवन भी अच्छा चल रहा है।
0: तो आप बढ़िया बात है। और आप घर पर ही रहती हैं, गृहिणी हैं या किसी तरह का कोई काम करती हैं, क्या करती हैं आप?
1: वैसे तो गृहिणी हूँ, लेकिन थोड़ा पार्ट टाइम में मैं अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट का मेरा छोटा सा बिजनेस है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट मतलब कि हस्तकला, कहाँ से लेती हैं? घर पर ही कुछ बनाती हैं या कहीं से मंगवाते हैं आप, किस तरह से होता है ये सब?
1: हाँ जी, मैं मतलब थोड़ा सा ट्रेडिंग जैसे आप समझ सकते हैं उसे, जयपुर से रिलेटेड है मेरे सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम।
0: अच्छा, तो ये अच्छा, तो ये जो सामान होते हैं आप जयपुर से मंगाती हैं सारी चीजें?

0: तो गिफ्ट आइटम्स होते हैं या इनको फिर किस तरह से बेचती हैं, और ये भी बताइए कि आप कैसे पसंद करती हैं, क्योंकि आप तो रहती हैं मुंबई और आपका अधिकतर जो सामान है वो आता है जयपुर से, तो किस तरह से ये जो चुनाव आप करती हैं कि क्या पसंद आएगा आपके कस्टमर को, ये सब कैसे होता है?
1: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप पे सारे पिक्स आ जाते हैं हमारे होलसेलर के यहाँ से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से, तो उसमें भी सेलेक्ट करते हैं। और साल में दो बार हमारा विजिट रहता है जयपुर में,
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पे सिलेक्शन करके आते हैं ज्यादातर।
0: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। और किस तरह का लोग आपके अनुभव के अनुसार किस तरह की चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं?
1: मोस्टली ना जैसे पेंटिंग्स है, टेबल के ऊपर रखने के जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं, और थ्रोज वगैरह वगैरह रहते हैं, तो उस तरीके के आइटम लोग बहुत पसंद करते हैं
0: जी।
1: ज्यादातर टेबल वेयर आइटम जो रहते हैं
0: वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप रहती हैं मुंबई और जो आजकल का डिजिटल जमाना है इसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं आप, और जयपुर से सामान मंगवा करके यहाँ मुंबई में बेचती हैं, मतलब आप सेल आउट करती हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: गीत तो वैसे मुझे पुराने काफी पसंद है, उसमें से एक मेरा पसंदीदा गीत है ओ मेरे दिल के चैन, जो कि फिल्म है मेरे जीवन साथी से
0: जी,
1: और मुंबई की भागदौड़ में चैन तो कम ही है, इसलिए गीत सुनकर मैं थोड़ा चैन मिल जाता है
0: जी। तो आपकी पसंद का ये गीत आपको प्रस्तुत करते हैं, और लीजिए चैन के थोड़े से लम्हे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं पूनम मंडोवरा जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: मध्य प्रदेश जबलपुर से क्या बात है? तो पूनम जी, क्या चलता है आपके जीवन में और क्या कर रही हैं आप इस वक्त?
1: शिक्षिका हूँ केंद्रीय विद्यालय में।
0: अरे वाह, आप एक शिक्षिका हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हैं। तो कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप?
1: कक्षा 6 से 10 तक मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ।
0: विज्ञान की शिक्षिका कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक। तो ये आप कितने सालों से पढ़ा रही हैं?
1: मुझे 14-15 वर्षों का अनुभव।
0: 14-15 वर्षों का, यानी कि बहुत सारा एक अनुभव आपके साथ इकट्ठा हो गया होगा। तो काफी सारा समय आपको पढ़ाने में निकल जाता होगा।
1: जी बिल्कुल। अभी नया सिलेबस भी आपने सुना भी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हम लोग का सिलेबस की बुक्स भी हर साल लगभग बदल रही है।
0: अच्छा अच्छा, तो इसके लिए तो आपको भी तैयारी करनी होती होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हमें भी कई वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती हैं। कई बार हमें घर से सप्ताह भर 10 दिन के लिए बाहर रहना पड़ता है। घर में भी हमें करीब 1 या 2 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है।
0: जी देखिए, सब जानते हैं कि पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होना या शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी तो है ही, लेकिन हमेशा लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। तो आप फिर खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे ये सब चीज आप मैनेज करते हैं?
1: जी सहेली आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमें समय का प्रबंधन बड़े अच्छे से करना पड़ता है।
0: जी ये बात तो बिल्कुल सही कही।
1: अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है। तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े सकुशलता से करना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल सही
1: कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ। बस आपकी विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है
0: जी जी
1: वो बड़ी अच्छी लगती है, तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सुनती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना?
1: हाँ जी बिल्कुल आपने सही बोला, मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन है।
0: चेस खेल के शौकीन है, क्या बात है। घर में खेला जाता है या स्कूल में ही सिखा रहे हैं आप बच्चों को?
1: नहीं स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है। और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे
0: जी,
1: वो दोनों का सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है।
0: क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। पूनम जी बताइए इस बात पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे यादों की बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म और चलिए देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: बड़ौदा से।
0: बड़ौदा से? बड़ौदा से कौन से की बात कर रही है? क्या नाम है आपका?
1: बड़ौदा से रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: बड़ौदा से रमीला बेन, कैसा है बड़ौदा रमीला बेन?
1: बड़ौदा तो बहुत बड़ा है, मगर हम तो बड़ौदा में छोटा सा गांव है सुंदरपुरा, वहाँ से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, ये बड़ौदा से पास में है सुंदरपुरा?
1: सुंदरपुरा गाँव है
0: जी। तो इन दिनों तो बहुत गर्मी होगी वहाँ?
1: बहुत सारी गर्मी है, रहने को भी कहाँ जाए ऐसा लगता, बर्फ गिरे तो अच्छा है ऐसा।
0: लेकिन आम के भी तो मजे ले रहे होंगे आप?
1: हाँ हाँ, आम हमारे पास में बगीचे है बहुत सारे, आम के नए नए कितने भी सारे आम है।
0: अच्छा,
1: मेरी शादी हुई थी 1990 में, अभी 36 के उतर के 37 में हो जाएगी।
0: 36 वर्ष पूरे हो गए आपके शादी के? तो ये तो बहुत बड़ा एक साथ आपका आपके पति के साथ है, तो इतने सालों का क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहेंगी आप हमारी सखियों को?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: 3 बच्चे, अरे वाह। तो बहुत सारे जी।
1: और प्रियंका।
0: अच्छा, तो जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इतने सालों में?
1: अरे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं।
0: आपके आने वाले जिंदगी में सुखद और खुश भरे दिन आए, ये शुभकामना करते हैं। रमीला बेन, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे पति को तो क्रांति पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो क्रांति फिल्म का एक गीत आपके लिए, ये हम विविध भारती की ओर से सुनिए।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का दीपा जी हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: जी आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने हमारा नाम तो पहचान लिया।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदा नाका इंदौर से।
0: हसीना भी तो बताइए क्या हाल है इंदौर के, और इंदौर का तो जो भोजन है खाना वहाँ का बहुत मशहूर है, सराफा, 56 दुकानें।
1: जी बहुत मशहूर है मैडम यहाँ पर, और साफ सफाई में नंबर वन है।
0: जी हाँ, ये तो नंबर वन है हमारे देश का साफ सफाई में इंदौर शहर। तो क्या चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में?
1: अभी तो जॉब पे थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे, और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी।
0: जी तो आप जॉब करती हैं?
1: जी सिलाई करते हैं।
0: सिलाई का काम करती हैं, तो घर से करती हैं या कहीं जाती हैं आप?
1: दुकान पे जाना पड़ता है।
0: अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती हैं ना आप?
1: हाँ, 9 बजे निकल जाते हैं, इतनी ज्यादा 9 बजे इतनी गर्मी नहीं रहती है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ ये बात तो सही है। और जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने फुर्सत के क्षणों में?
1: अधिकतर सुनते हैं मैडम, रेडियो के बिना तो हम लोग एक पल नहीं रह पाते। हाँ। कहीं पर भी फोन इन का भी काम आता ना, सब दूर लगाते रहते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, और देखिए आज आपका कॉल लग भी गया। तो आज हसीना भी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: इनका नाम है अपना बना लो, और गाने के बोल है, इस दिल का नहीं कोई, इस दिल से प्यार करना, देखो कोई प्यार न करना, मरना लेकिन प्यार न करना, ये सुना दीजिए।
0: चलिए लीजिए, पेश है आप ही की पसंद का गीत विविध भारती की ओर से।
2: इस दिल

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किस सहेली से बात हो रही है हमारी?
1: साधना प्रतापगढ़ से।
0: साधना जी प्रतापगढ़ से, कैसी है साधना जी?
1: बहुत अच्छे, अपना सही।
0: बस हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा चल रहा है मौसम प्रतापगढ़ में?
1: बहुत ही अच्छा मौसम है, पितृपक्ष का मौसम है।
0: अच्छा
1: जी, आज मुझे गाना सुनना
0: है। हाँ बताइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मिलन फिल्म का गाना है।
0: तो चलिए सुनते हैं पिया मिलन का गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। देखते हैं किस सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका? कौन से सखी से बात हो रही है हमारी?
1: हमारा मेरी नाम है ग्राम बैठू पोस्ट पकड़िया जिला सिंदौली से।
0: जिला सिंदौली से। ये कौन से बड़े शहर के पास पड़ता है इमरती जी?
1: ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में सिंदौली शहर पड़ता है।
0: अच्छा, तो वहाँ से बात कर रही हैं। क्या करती हैं इमरती जी?
1: मैं घर में रहती हूँ मैम, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, आप देख नहीं सकते, घर पे रहते हैं तो?
1: लेकिन मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा मैं रेडियो पे।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: और आप लोग आते हैं सखी सहेली में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हंसते भी तभी अच्छा लगता है।
0: तो मुस्कान आप ही सबके लिए होती है और जो बातें होती है हम सब सखियों के लिए तो होती है। जो बात आप लोग लिखते हैं, जो संदेश हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़े, कुछ नया सीखे, है ना?
1: जी, हर विषय पे आप लोग जानकारियां देते हैं, हर विषय की जो बातचीत आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा
0: जी
1: जानकारियां भी मिलती है रेडियो के जरिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो इमरती जी बताइए, आज कौन सी फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में गीत है, बहुत अच्छा गीत लगता है मुझे। मैं पुराने सभी तरह के गीत अच्छे लगते हैं रेडियो पे, जैसा भी गाना बजता है वो सभी गाने अच्छे।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रजनी रावत बोल रही हूँ।
0: रजनी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं एमपी भिंड जिले से बोल रही हूँ।
0: एमपी भिंड से। रजनी जी, क्या करते हैं आप? गृहिणी हैं या कुछ किसी तरह का काम करते हैं?
1: जी, वैसे तो मैं गृहिणी ही हूँ और घर में ही काम करती हूँ, जो कुछ करना है। बाकी फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक है, पुराने गीत
0: जी।
1: आपके प्रोग्राम सुनने का शौक है पूरे विविध भारती के।
0: क्या बात है, विविध भारती के आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: विविध भारती का एक गीत मालिका है
0: जी,
1: सबसे अच्छा लगता है मुझे छाया गीत
0: जी। हाँ,
1: और वो कम से कम मैं 15-20 सालों से मतलब वो कार्यक्रम सुन रही हूँ। मैं छोटी से मतलब मैंने विविध भारती सुना है बचपन से, और मेरी उम्र में लगभग 45 साल हुई
0: जी।
1: मैंने कम से कम 20-25 साल हो गए विविध भारती सुनते सुनते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: और सखी सहेली सुनना थी, यही में
0: जी।
1: सखी सहेली तो बहुत बाद में शुरू हुआ था प्रोग्राम।
0: तो आज रजनी जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी, मुझे आशा भोसले के बाद में तीसरी किस्म फिल्म का गाना है, पान खाए सैया हमारे।
0: तो आशा जी को याद करते हुए सुनते हैं ये आपकी पसंद का गीत। पान

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम झनकार बोल रहे हैं, मुंबई से।
0: झनकार मुंबई से, क्या बात है, आपकी तो आवाज में ही एक झनक सुनाई दे रही है झनकार जी।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: तो क्या करती हैं झनकार आप?
1: आजकल तो मेरी एक कथक टीचर है और श्रीमती नूतन पशवर्धन, मैं उनको असिस्ट करती हूँ, बच्चों को कथक सिखाती हूँ उनके साथ।
0: क्या बात है, तो आप कथक सिखाती हैं, इसका मतलब है कि आपने भी पहले सीखा होगा।
1: मैं बहुत साल से उनके साथ हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है जो चलती रहती है, हम कभी कह नहीं सकते कि हम परांगत हो गए हैं। तो अभी भी उनके साथ सीख ही रही हूँ, कुछ आया नहीं है ज्यादा, पर हाँ ये उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ में असिस्ट करो, तो मुझे तो बहुत गौरव महसूस हुआ, तो मैं उनके साथ बच्चों को आजकल कथक थोड़ा सिखाती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है,
1: शायद
0: क्या बात
1: आपको
0: है?
1: पीछे घुंघरू सुनाई पड़े होंगे, क्योंकि मैं उसी क्लास में हूँ।
0: अच्छा, आप उसी क्लास में हैं और सिखा रही हैं?
1: सीख रही हूँ इस वक्त, तो
0: सीख रही हैं
1: अपनी।
0: अच्छा, बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आप, आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं, या अपने आपने कोई अपना ही एक तरीका अपनाया है बच्चों को सिखाने?
1: नहीं, शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ मैं, और कथक में भी एक हम गुरु जो प्रणाली होती है, शिष्य, हम उसी को फॉलो करते हैं। तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है
0: जी।
1: ये बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो गुरु से शिष्यों में जाती है, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है।
0: ये बात आपने,
1: कुछ भी करते हैं सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है, दीपा जी मैं आपको बात कर रही हूँ, मैं जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ है तत तत है, तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती गुरु की।
0: क्या बात
1: कि
0: है,
1: वो जैसे बोलती थी थाई जोर से मारो, तत लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं, वो ही कोशिश करती हूँ।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: तो अपूर्णता है थोड़ा, तो है तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसी ही चाहते हैं जैसे है, कम से कम पहले थोड़ा आ जाए, तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही,
1: योग्य हो जाए तब कर सकते हैं, अभी मुझे नहीं लगता मैं उस योग्य हूँ।
0: देखिए, गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है, और कहीं वो अहम या अहंकार की भावना पनप ही नहीं पाती।
1: इसलिए हमारे यहाँ तो शुरू में नमस्कार किया जाता है
0: जी,
1: जिस जगह हम हैं उस जगह को अपने गुरु को सबको नमस्कार करके ही हम क्लास शुरू करते हैं
0: जी। तो आप कोई छोटा सा तोड़ा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है तो बोल के बताएंगी?
1: कोशिश कर सकती हूँ
0: जी,
1: और चलिए मैं आपको एक टुकड़ा बोलती हूँ
0: जी,
1: जो तीन ताल में है और मैं बोलती हूँ, तो तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं और मैं वो आपको टुकड़ा बोलती हूँ। तत तत थुन थुन तिग्दा दिग दिग थै, तत तत थुन थुन तिग्दा दिग दिग थै, तिग्दा दिग दिग थै, तिग्दा दिग दिग थै, ता थै, तत तत थै, तत तत थै, तत तत थै। इसे सादा तोड़ा बोलते हैं और कथक में जो कई अंग होते हैं, जैसे ठाट है, आमद है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन है, तो ऐसा ही ये एक सादा तोड़ा है। और ये बहुत ही शुरू में 2-1 साल बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है।
0: क्या बात,
1: और आपने एकदम से बोला तो बस मेरे को ये मैंने बोल दिया
0: जी। तो देखिए, लेकिन आप क्योंकि हमेशा सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो आपको वो मुंह जबानी अच्छे से याद है। तो बताइए झनकार जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं वो एक स्वामी पिक्चर का है, पल भर में ये क्या हो गया, मुझे
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: अच्छी
0: जी, जी वो बहुत सुंदर गीत है, तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम सीमा है।
0: सीमा जी कहाँ से बात कर रही हैं सीमा जी?
1: ये उज्जैन, उज्जैन के पास गांव है पान बिहार।
0: अच्छा सा नाम है, पान बिहार, है ना, सुनने में
1: इस अच्छा सा और बड़ा भी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या करती हैं सीमा जी आप?
1: कुछ नहीं मैडम, मैं तो खेती का काम करती हूँ।
0: खेती का काम? तो ये कोई छोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण भी है ना।
1: महत्वपूर्ण भी, मतलब खेत पे ही शुरुआत खेत से ही होती है हमारे तो सुबह की।
0: तो किस तरह का काम आपका खेत पे रहता है? कोई
1: निंदाई खुदाई है, तो कोई चारा वारा डालना है
0: जी,
1: इसमें पानी देना है।
0: तो वहाँ पे पशु भी है?
1: हाँ है ना,
0: क्योंकि आपने चारे की बात की ना, तो वहाँ पे पशु भी है
1: ना। है भैंस?
0: क्या है वहाँ पर पशुधन में? भैंस है। कितनी भैंसे हैं?
1: दो भैंसे हैं और दो गाय हैं।
0: दो गाय दो भैंसे, तो भाई इन्हें भी बहुत ध्यान से रखना होता है ना, बिल्कुल अपने परिवार अपने बच्चों की तरह।
1: बच्चों की तरह रखना पड़ता है उनको, टाइम से पानी पिलाना।
0: जी तो इन दिनों गर्मी भी बहुत है, तो उनके भी चारा देने का
1: तो उनको खाने की व्यवस्था भी की है ना।
0: जी अच्छा, बहुत सुंदर बात कि उनके, आप खुद का तो ध्यान रख ही रही हैं, उनके लिए भी छाया की एक अलग से जगह बनाई है जहाँ पे वो छाव में रह सके, बैठ सके,
1: बंदे रहते हैं और उनको चारा पानी है, पानी वानी टाइम टाइम से खिलाते हैं।
0: जी तो थक कर जब शाम को घर पे आती हैं, फिर से आपको भोजन बनाना होता होगा?
1: वहाँ पे घर है, इसमें घर में अंदर बांध कर खिला देते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सीमा जी। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आज?
1: जी मैडम, मेरे को सुनना है माँ तो कितनी अच्छी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैम, मैं मनीषा कौशल इंदौर से बात कर रही हूँ।
0: मनीषा जी इंदौर से। मनीषा जी जी, क्या कर रही थी अभी आप फोन लगाने से पहले?
1: मैम, मैं अभी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का काम करती हूँ मैं।
0: सिलाई का काम करती हैं।
1: खुशी इतनी हो रही मुझे कि मेरी कॉल लग गई, पहली बार कॉल लगा मेरा
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना।
1: क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलते थे कि एक बार मैं लगा के रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा सखी सहेली सुनते हैं, दिन भर उनका प्रोग्राम चलता रहता है, उनको मतलब शौक है रेडियो सुनने का, तो वो वेडिंग का काम करते हैं, तो वो मतलब चलता रहता उनका डेली का, तो बोलते लगा के देखना एक बार तो लग ही जाएगा तेरा।
0: कि बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, आज आप आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम वाला गाना सुनवाती थी।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए। हाँ। किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: दीदी मैं बोल रही हूँ कवाई शालपुरा जिला बारा राजस्थान से, प्रेम नगर तिवारी साहब। और दीदी आज मेरा 7 सालों बाद कॉल लगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: 7 सालों के बाद?
1: जी दीदी।
0: बहुत बहुत बधाई आपको प्रेमलता जी, तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको।
1: हाँ दीदी बहुत खुशी हो रही है।
0: रेडियो तो सुनती हैं, इसके अलावा आपको क्या पसंद है?
1: दीदी मेरे को तो रेडियो सुनना पसंद है, और मतलब कहीं अपन मतलब कोई मतलब अच्छा धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना
0: जी,
1: उसमें जाना पसंद है मुझे।
0: बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
1: दीदी फिल्म का नाम है गाइड, पिया तोसे नैना लागे रे।
0: तो चलिए सुनते हैं गाइड फिल्म का पिया तोसे नैना लागे रे, आप ही की पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली में बातों का सिलसिला आज बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 02240024662, अंग्रेजी में 02240024662। इसके अलावा 02228670288, यानी 02228670288, 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सहेलियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें, ताकि अन्य हमारी सहेलियों को एक अवसर प्रदान हो सके। आज की हेलो सहेली में सहयोग दिया संपादन में नम्रता टिकोड़े ने, तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका है ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही है।
1: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना, अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हां में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली, दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हां, कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच। आ, आ, आ,

वे बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भर आए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गईं। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी माँ की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। माँ के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच। अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

वहीं लौटकर माँ ने मुझे अपनाने का दावा किया था। वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा। हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई। उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भराया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की। सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तब घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।

वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी। मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहड़ सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थीं, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और ओस में नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी माँ ने यहां उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस माँ का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नजदीक पहुंचे। हाथों में ग्लब्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं माँ बन गई हूं। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरो के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

उस फूल सी नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल, माँ की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ में लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा, उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा, फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहाँ तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्चे हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बाज हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्ची को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे, ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरो, उस बच्ची ने कांटों सी जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दस्तावेज पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी हैं उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुदी आंखें अपनी माँ को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूँ। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें, नन्ही नरम हथेलियां, उसकी निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई, मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या माँ बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? माँ बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं, वो माँ बाप नहीं।

होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं? तो क्या आप तैयार हैं इस सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को माँ का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरसते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्चे पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरो, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था, मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा, उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छन कर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्ची मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती। थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है, हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि मां बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताजी महक फैली हुई थी, पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजा कर बारिश के बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूं, मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती

मारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर यह अचानक ये मुसीबत कहां से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूँ कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दो राहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला। जन्म देने वाली माँ को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए, अनुष्का के जन्मदात्री माँ भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ देह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थीं। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। उसमें भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी माँ के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहां जा रही है वही उसकी असली माँ है, मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था, नीर और निर्विकार भाव से इस नियत को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने माँ पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपनी सुविधा अनुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी माँ के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं। फिर जब वो रुका तो उसकी सूनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी। ऐसे कसकर लिपट जाती
जैसे

उसके जन्म देने वाली माँ हूँ। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गईं। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई। उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले माँ ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आईं, पर ये आंसू मातृत्व की कमी के नहीं थे, बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी माँ की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, माँ तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया और खो दिया, लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे, मानो घर की दीवारें भी सुन रही हों। अनुष्का के पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं। कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलटकर देखा। वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक माँ की बेटी हूँ। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा। अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था, एक नई शुरुआत का। उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

सपने में ठिठका इंतजार, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखिका और स्वर ममता सिंह, संपादन काजल भगरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है, एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

श्री शाह भाजपा के सभी 207 नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री चुना जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिहार में लीची की फसल को कीड़ों से होने वाले नुकसान से रोकने के लिए त्वरित और सक्रिय कदम उठाए हैं। श्री चौहान ने एक विशेष विशेषज्ञ कार्यबल गठित करने का निर्देश दिया। अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% के वैश्विक शुल्क को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित निर्माणाधीन विकास कार्यों में तेजी लाकर उन्हें समय सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना अत्यंत आवश्यक है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: साथियों आपका स्वागत है आज के खास युववाणी कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना मित्र अनुपम खरे, लेकर आया हूं आज का युववाणी कार्यक्रम। साथियों आज के कार्यक्रम में हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, साथ ही होगी वार्ता और होंगे आपके मनोरंजन के लिए मधुर गीत भी। तो आइए दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस चर्चा के साथ, जिसका विषय है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक महंगाई मापने के प्रमुख उपकरण है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI आम उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाले वस्तु और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। यह आम लोगों की जीवन यापन लागत को समझने में मदद करता है। CPI में खाद्य पदार्थ, कपड़े, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजें शामिल होती हैं। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। यह मुख्य रूप से उत्पादकों और व्यापारियों के स्तर की महंगाई को दिखाता है। WPI में कच्चा माल, ईंधन और विनिर्मित वस्तुएं शामिल होती हैं। CPI का उपयोग आमतौर पर मौद्रिक नीति बनाने में किया जाता है, जबकि WPI से उत्पादन लागत और आपूर्ति की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। CPI सीधे आम जनता को प्रभावित करता है, जबकि WPI अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। दोनों सूचकांक मिलकर अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने में सहायक होते हैं। अगर CPI बढ़ता है तो महंगाई बढ़ने का संकेत मिलता है। WPI में वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ने का संकेत मिलता है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इन सूचकांकों के आधार पर नीतियां बनाते हैं, इसलिए CPI और WPI दोनों आर्थिक विश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों ये तो थी हमारी एक छोटी सी जानकारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक पर। साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको लेकर चलते हैं वार्ता की ओर। वार्ता का विषय है जल संरक्षण। वार्ताकार हैं सुमुख रावत।
1: सभी को नमस्कार, और आज हम जल के संरक्षण और जल के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जल संरक्षण वर्तमान समय की महती आवश्यकता। जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह न केवल हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, बल्कि यह कृषि, उद्योग और संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी अनिवार्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया का लगभग 40% आबादी को पर्याप्त स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। जल संकट लगातार बढ़ रहा है, और यदि इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में यह समस्या और भी विकराल हो सकती है। जल का अनावश्यक उपयोग, जल स्रोतों का दूषित होना और जलवायु परिवर्तन की वजह से वर्षा में अनिश्चित जल संकट को और गंभीर बना दिया है। इसलिए जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्यता बन गया है। जल संकट के महत्व, जल संकट के कारण, जल संरक्षण के विभिन्न उपायों और इससे जुड़े सामाजिक तत्वों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जल संरक्षण का महत्व। जल संरक्षण का अर्थ है जल के उपयोग को अनुकूलित करना, जल की बर्बादी को रोकना और जल स्रोतों की रक्षा करना। यह न केवल हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। पहला, मानव जीवन का आधार। जल के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। यह पीने, खाना पकाने, स्वच्छता बनाए रखने, कृषि और कार्यों में आवश्यक भूमिका निभाता है। दूसरा, कृषि और खाद्य सुरक्षा। कृषि क्षेत्र जल पर अत्यधिक निर्भर करता है। सिंचाई के बिना खेती असंभव है। जल की कमी के कारण फसल उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। तीसरा, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। नदियाँ, झीलें और समुद्र कई जीवों का प्राकृतिक आवास है। जल स्रोतों की कमी से जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है और पारिस्थितिक असंतुलित हो जाती है। चौथा, ऊर्जा उत्पादन में योगदान। जल का उपयोग बिजली, हाइड्रो पावर उत्पादन में किया जाता है। यदि जल संकट बढ़ता है तो बिजली उत्पादन भी प्रभावित होता है, जिससे औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में ऊर्जा की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पांचवा, औद्योगिक और आर्थिक विकास। अधिकांश उद्योगों में जल की आवश्यकता होती है। यदि जल की उपलब्धता सीमित हो जाती है तो औद्योगिक उत्पादन भी प्रभावित होगा, जिससे आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान जल संकट और इसके कारण जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन, भूमिगत जल का अनियंत्रित दोहन जल संकट का एक प्रमुख कारण है। उद्योगों, कृषि और घरेलू उपयोग के लिए लगातार बढ़ते दोहन ने भूमिगत जल स्तर को अत्यधिक गिरा दिया है। जल प्रदूषण, औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक अपशिष्ट, कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशक और घरेलू गंदगी जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं। इससे स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन और अनिश्चित वर्षा, जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का पैटर्न अनिश्चित हो गया है। कई क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या बनी हुई है। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि के साथ जल की मांग भी बढ़ रही है। शहरीकरण के कारण जल स्रोतों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, जिससे जल संकट और भी गंभीर हो गया है। जल प्रबंधन की कमी, भारत जैसे देशों में जल प्रबंधन की कमी भी जल संकट का एक बड़ा कारण है। जल संचयन और जल पुनर्चक्रण, वाटर रिसाइकलिंग की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण जल का अपव्यय हो रहा है। जल संरक्षण के उपाय, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल का संरक्षण और उपयोग जल संकट को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। इसके लिए विधियां अपनाई जा सकती हैं। छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर जल संरक्षण किया जाए। तालाबों और कुओं का पुनरुद्धार किया जाए। ग्रामीणों क्षेत्रों में पारंपरिक जल संचयन तकनीकों को अपनाया जाए। भूमिगत जल पुनर्वरण, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, कुओं, तालाबों और बावड़ियों की सफाई कर उन्हें जल संरक्षण के लिए उपयुक्त बनाए जाए। सड़कों और घरों के पास परकुलेशन टैंक बनाए जाए, ताकि वर्षा जल जमीन में समा सके। सिंचाई में जल की बचत, टपकन सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग किया जाए। कम पानी वाली फसलें उगाई जाए। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन अपनाया जाए। घरेलू स्तर पर जल की बचत, नलों को खुला ना छोड़ें और टपकते नलों को ठीक कराएं। बाल्टी से नहाने को प्राथमिकता दें। शावर को कम उपयोग करें। कपड़े और बर्तन धोने में पानी ही कम खर्च करें। उद्योगों में जल संरक्षण, जब जल पुनर्चक्रण तकनीकों को अपनाएं, औद्योगिक कचरे को जल स्रोतों में बहाने से रोकें, कारखानों में जल उपयोग की प्रभावी निगरानी हो। जल स्रोतों का संरक्षण, नदियां, झीलें और जलाशयों की सफाई और पुनरुद्धार किया जाए। जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण किया जाए। जन जागरूकता अभियान, स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर जल संरक्षण पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। जल संरक्षण पर सामाजिक अभियानों को बढ़ावा दिया जाए। सरकार और समाज की भूमिका, सरकार नीतियों और योजनाएं, नमामि गंगे जैसी योजनाएं का विस्तार किया जाए। जल संरक्षण कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। किसानों को जल बचाने की तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया जाए। समाज

0: की भूमिका। प्रत्येक नागरिक को जल की बचत के लिए प्रयास करने चाहिए। सामाजिक संगठनों को जल संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए। युवाओं को जल संरक्षण अभियानों में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष, जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है। यदि हम जल को बचाने के लिए अभी से प्रयास नहीं करेंगे तो भविष्य में जल संकट और भी गहरा हो सकता है। हमें व्यक्तिगत, सामाजिक और सरकारी स्तर पर मिलकर जल संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। जल बचाने के लिए हमें अपनी आदतों में सुधार करना होगा, जल स्रोतों को स्वच्छ रखना होगा, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना होगा और जल पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को अपनाना होगा। सरकार, उद्योगों और आम जनता को मिलकर जल प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना होगा। जल है तो कल है, यह केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सच्चाई है। यदि हम जल संरक्षण के लिए अभी से कार्य करें तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। जल की हर एक बूंद अनमोल है, इसे बचाना सभी की जिम्मेदारी है।
1: साथियों, अभी आपने सुनी ये वार्ता जिसका विषय था जल संरक्षण। वार्ताकार थे सुमुख रावत। साथियों, कार्यक्रम का रुख मोड़ देते हैं अब मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये मधुर गीत।

साथियों, अभी हमने जो ये गीत सुना ये था फिल्म कारवां से, जिसमें आवाज थी अरिजीत सिंह की, जिसके गीतकार थे आकर्ष खुराना और संगीत से सवारा था अनुराग साइकिया ने। साथियों, जैसा आप सभी को ज्ञात है कि आज है 8 मई, यानी आज ही के दिन हम विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाते हैं। तो हम आपको दे देते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। यह दिन मानवता, सेवा और करुणा के मूल्यों को सम्मान देने के लिए समर्पित है। यह दिन हेनरी ड्यूनांट के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक थे। उन्होंने युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद के लिए एक वैश्विक मानवीय संगठन की नींव रखी। विश्व रेड क्रॉस दिवस का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करना, आपदा और संकट में राहत कार्यों के महत्व को समझाना, स्वयं सेवकों के योगदान को सम्मान देना। रेड क्रॉस संगठन दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। बाढ़, भूकंप, युद्ध आदि में सहायता, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, रक्तदान शिविरों का आयोजन, शरणार्थियों और जरूरतमंदों की मदद करना। आज के समय में जब दुनिया विभिन्न संकटों से जूझ रही है, रेड क्रॉस जैसे संगठन मानवता के लिए उम्मीद की किरण है। यह हमें सिखाता है कि बिना किसी भेदभाव के दूसरों की मदद करना ही सच्ची मानवता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हमें यह याद दिलाता है कि छोटे छोटे प्रयास भी किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। सेवा, सहानुभूति और सहयोग के माध्यम से हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में। साथियों, आपको लेकर चलते हैं हमारी आखिरी चर्चा की ओर, जिसका विषय है संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और जागरूकता बढ़ाना है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई है। सड़क सुरक्षा एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बन चुका है। हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न देशों में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग जीवन बचा सकता है। तेज गति और लापरवाही दुर्घटनाओं का मुख्य कारण भी बनती है। नशे में वाहन चलाना बहुत खतरनाक होता है। पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा शिक्षा भी दी जाती है। सरकारें बेहतर सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था बनाने पर जोर देती है। यह सप्ताह युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश फैलाया जाता है। आपातकालीन सेवाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह सुरक्षित ड्राइविंग करे। छोटी छोटी सावधानियां बड़े हादसों को रोक सकती हैं। यह अभियान सुरक्षा पहले की सिद्धांत को बढ़ावा देता है। मिलकर प्रयास करने से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। तो साथियों, हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें और वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। साथियों, ये तो थी हमारी एक चर्चा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह पर। साथियों, वक्त हो चला है मनोरंजन का, तो आइए करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस मधुर गीत के साथ।

साथ ही अभी हमने सुना फिल्म अखियों के झरोके से ये मधुर गीत, जिसमें आवाज थी हेमलता की, जिसके गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। साथ ही अब जाते जाते दे देते हैं आपको रोजगार सूचना भी। आरआरबी योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है सहायक लोको पायलट यानी ALP, जिसमें पदों की संख्या है 11,127। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता है उम्मीदवार को संबंधित ट्रेड में ITI डिप्लोमा के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट यानी www.indianrailwaysgovernment.in पर विजिट भी कर सकते हैं। ना चाहते हुए भी वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपने मित्र अनुपम खरे को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति में कार्यक्रम युववाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार
1: विलन, मगर जीवन में
0: कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने पर हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: निजी प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लिजा के लफ्ज और लम्हे।
1: हिल इंडिया हाइड्रो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करता है लिजा के
2: लफ्ज और लम्हे।
3: मैं नासिर
2: और मैं साहिबा
3: शेरो सुखन की इस महफिल में सामाइन का खैर मकदम करते हैं।
2: कहाँ पाबंद होती है जमाने के सलीकों से, मोहब्बत नाम है इसका चले अपने तरीकों से।
3: वाह वाह क्या बात है साहिबा जी, आज तो आपका अंदाज बहुत शायराना है।
2: शुक्रिया शुक्रिया, मगर नासिर जी ये अंदाज मेरा नहीं बल्कि ये तो मतला है लिजा सारा खां की एक बेहतरीन गजल का।
3: अरे तो सिर्फ मतला ही क्यों, पूरी गजल क्यों नहीं?
2: आपका हुक्म सर माथे पर, चलिए सुनते हैं ये गजल लिजा जी की आवाज में।
4: आज मेरी इस गजल का मौजू है मोहब्बत। क्या है मोहब्बत, अदा है, सजा है, जिद है या जज्बात?
5: कहा

0: कभी कदमों को शोलों पर, कभी कांटों पे सर रख कर, कभी कदमों को शोलों पर, कभी कांटों पे सर रख कर। मोहब्बत नाम है इसका, चले अपने तरीकों से। कभी सैलाब अशकों का, बगावत की कभी आंधी।
1: वाह बहुत खूब।
0: कभी सैलाब अशकों का,

0: सदियों का कभी पल भर में हो राजी, कभी इनकार सदियों का कभी पल भर में हो राजी।
1: वाह।

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: मोहब्बत नाम है इसका, चले अपने तरीकों से, कभी सारा नरम रहे कभी

0: करना होगा। इजाजत दीजिए साहिबा
1: और नासिर को।
2: लिजा के
0: लफ्ज और लम्हे।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे हिल इंडिया हाइड्रो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लिजा के लफ्ज और लम्हे। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:35 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए संगीत सरिता। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहली गजल।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे। कलाम था फना निज़ामी का।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये गजल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोताओ, अभी जो गजल आपने सुनी थी वो थी चंदन दास की आवाज में और कलाम लिखा था बशीर बद्र ने। और अब सुनिए कार्यक्रम में ये गजल।

आमिर खानफी का लिखा हुआ कलाम अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की। और इसी गज़ल के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। शाम के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल

0: विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वित्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। अब सुनिए तराने नए पुराने के शेष गाने। ये गीत है अभिमान फिल्म से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। मजरूह के लिए इस गीत की धुन बनाई है एस डी बर्मन ने।

एक पहेली लीला। इस फिल्म में अभी आपने सुना तुलसी कुमार, आलम खां, ऐश्वर्या मजूमदार और डब्बू मलिक को। बोल कुमार के थे, संगीत उजैर जायसवाल का। अब आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया यादों की बारात फिल्म का गीत। तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने, बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

अगला गीत सोनू निगम और नीति मोहन का गाया हुआ है, फिल्म है ब्रदर्स। धुन बनाई है अजय अतुल ने, खूबसूरत बोलों को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया त्रिशूल फिल्म का गीत, बोल साहिर लुधियानवी के संगीत खयाम का।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सदाबहार गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

0: लव स्टोरी। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं लता मंगेशकर और अमित कुमार की, संगीत था आर डी बर्मन का और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 GST है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
0: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये गीत।

जीवा इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं आशा भोसले और अमित कुमार की। गीत लिखा था गुलजार ने, संगीत था आर डी बर्मन का। फिल्म थी जीवा। इसी गीत के साथ सदाबहार गीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोक रंग। आइए सबसे पहले सुनते हैं पुरुषोत्तम नायक और साथियों से ये विवाह गीत।

0: ओहो भाई साहब, फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
1: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
0: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है, चक्की का पक्का साथी जोयल पत्थर लाओ और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में जोयल पत्थर।
1: जोयल के असली पत्थर के लिए आए ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 4, लिंक रोड, सागर।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: और अब सुनिए उर्मिला पांडे से ये विवाह गीत।

और अब सुनिए आनंदी पटेल से ये शिव विवाह गीत।

इस विवाह गीत के साथ लोकरंग कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने कहा कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिल वेत्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई

वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, अब से कुछ ही समय पश्चात शाम 7:10 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। लोकरंग, ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:20 पर। शाम 7:30 पर सुनिएगा आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित कार्यक्रम। चित्रपट संगीत, ये कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:15 पर सुनिएगा संगीत सरिता। रात्रि 8:30 पर सुनिएगा भेंट वार्ता, विषय होगा न्यूरो संबंधी समस्याएं और समाधान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रोहित कुशवाहा, डीएम न्यूरोलॉजी। भेंट करता होंगे दीपक निषाद। रात्रि 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 9 सुनिएगा मन चाहे गीत।

श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें हमारी कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हिंदी में समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 6 बजे से। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुनिएगा प्रातः 6:05 पर। श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ आप सुन सकेंगे सुबह 6:30 पर। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम होगा प्रातः 6:40 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा संस्कृत में समाचार सुबह 6:55 पर। सुबह सुबह ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 7 बजे से। कृषि संकेत आप सुनिएगा सुबह 7:05 पर। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे सुबह 7:10 पर। मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम होगा प्रातः 7:20 पर।

संगीत सरिता। यह कार्यक्रम होगा सुबह 7:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार प्रभात आप सुनिएगा सुबह 8 बजे से। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 8:15 पर। सुबह 8:30 पर सुनिएगा चित्रपट संगीत जिले की चिट्ठी। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे सुबह 10 बजे से चिट्ठी से लोकगीत। यह कार्यक्रम होगा सुबह 10:05 पर। ग्राम लक्ष्मी आप सुनिएगा प्रातः 10:30 से। प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से दोपहर 2:10 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा दोपहर समाचार। समय होगा दोपहर के 2:15। इस घंटे की सुर्खियां आप सुनिएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से शाम 5 बजे से। युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी आप सुनिएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से शाम 5:02 पर। शाम 5:30 पर सुनिएगा संगीत सरिता। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 MHz पर। शाम के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मिराना शाह है। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को करेंगे दर्शन पूजन। अगले 1000 दिनों तक होंगी विशेष प्रार्थनाएं। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर, कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लेंगे शपथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात। और देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह सामान्य, वाणिज्यिक आपूर्ति 70% बहाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। श्री मोदी ने एक अखबार में लिखे लेख में कहा कि सोमनाथ भारत की सभ्यतागत ताकत का प्रतीक है और यह मंदिर बताता है कि आस्था और संस्कृति बार बार के हमलों के बावजूद जिंदा रहती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद कोलकाता में आयोजित विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया है। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया।
1: प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शुभेंदु अधिकारी ने इस चुनाव में ममता बनर्जी को उनके गृह क्षेत्र भवानीपुर से हराया है और नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। श्री शुभेंदु कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनके निवास पर भेंट की। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी शिष्टाचार भेंट कर उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट किया। दोनों नेताओं ने संगठनात्मक मामलों और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा भी की। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार का कहना है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी वितरक पर गैस की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि वाणिज्यिक आपूर्ति करीब 70% तक बहाल हो चुकी है और प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति भी बढ़ा दी गई है। मार्च से अब तक 6 लाख से अधिक PNG कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं और देश में कहीं भी पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है।
3: अभी तक 6.5 लाख से अधिक PNG कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया, ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को PNG कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है।
0: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्व रेडक्रॉस दिवस पर भोपाल में आयोजित सेवा सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है और रेडक्रॉस के 7 मूलभूत सिद्धांत जीवन जीने के सच्चे मार्गदर्शक हैं। प्रदेश में अब तक 9 लाख से अधिक किसानों से 53.40 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है और करीब 9,500 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जा चुका है। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल के साथ 40 रुपए बोनस मिलाकर किसानों को कुल 2,625 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। राज्य सरकार ने खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 23 मई 2026 कर दी है और उपार्जन केंद्रों पर तौल पर्ची बनाने का समय भी रात 10 बजे तक कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज बाणसागर सर्किट हाउस में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की। श्री शुक्ल ने शहडोल उमरिया मार्ग और विजय सोता पुल निर्माण में अपेक्षित प्रगति न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्रों, सांदीपनी विद्यालय और जर्जर शासकीय विद्यालयों की मरम्मत जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। प्रदेश में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 1,21,392 घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए 847 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया है। ऊर्जा विकास निगम के एमडी अमनबीर सिंह बैस ने बताया कि अच्छा काम करने वाले वेंडरों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि लापरवाह वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आकाशवाणी की सेवा के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज नई दिल्ली में 3.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक होते हुए वापस आकाशवाणी भवन पर ही खत्म हुई। इसी तरह की एक दौड़ भोपाल स्थित आकाशवाणी के दफ्तर से भी सुबह आयोजित की गई। रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से बनी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उत्तर रेलवे के अहम रूटों पर लगाने की मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 362 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिरोजपुर डिवीजन के 1000 किलोमीटर और जम्मू डिवीजन के 446 किलोमीटर रूट पर यह सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें जालंधर जम्मू तवी कटरा, बटाला पठानकोट और बनिहाल बारामूला जैसे महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। कवच एक स्वदेश निर्मित स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, जो खतरे की स्थिति में ट्रेन में अपने आप ब्रेक लगाकर टक्कर और दुर्घटना को रोकती है। राज्य शिक्षा केंद्र ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीएड, डीएलएड, एमएड समेत विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश की समय सारणी जारी कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी rsk.mponline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें डीएलएड के लिए 15 मई से, बीएड के लिए 25 मई से और एमएड के लिए 1 जून से आवेदन शुरू होंगे। कुछ ही देर बाद आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं कल रात लखनऊ में बारिश से बाधित मैच में लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से मात दी। मिचेल मार्श की शानदार बल्लेबाजी ने उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिलाया। प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी व पूर्वी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा और पांडुना में आज तेज आंधी के साथ ओले गिरने की प्रबल संभावना है, जिससे किसानों की फसल को नुकसान हो सकता है। वहीं छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 मई को गुना आएंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रदेश भर में कल नेशनल लोक अदालत लगेगी, जहां बिजली बिल, बैंक रिकवरी, तलाक, सड़क हादसे और चेक बाउंस जैसे पुराने मामलों का आपसी सहमति से जल्द निपटारा किया जाएगा। अशोकनगर के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने जिला अस्पताल का अचानक दौरा कर आईसीयू में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। आगरमालवा के कंपनी गार्डन में जिला बैठक हुई, जिसमें अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, सांसद और संभाग प्रभारी शामिल रहे। शिवपुरी में जनगणना 2027 के काम में लापरवाही करने वाले 12 कर्मचारियों और अफसरों को नोटिस थमाया गया। शहडोल में वन विभाग तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को जंगली जानवरों से बचाव के तरीके बता रहा है और अच्छे पत्ते तोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोक रंग। आइए सबसे पहले सुनते हैं मैयादीन पाठक से ये बाल विवाह विरोधी गीत।

साथियों नमस्कार। सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्धन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और कुल आदि ग्रामवासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: ओहो भाई साहब, फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
3: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
2: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है, चक्की का पक्का साथी जोयल पत्थर लाओ और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में जोयल पत्थर।
3: जोयल के असली पत्थर के लिए आए ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 4, लिंक रोड, सागर।
4: और अब सुनिए बद्री प्रसाद परदेसी और साथियों से ये गारी गीत।

इस गारी गीत के साथ कार्यक्रम लोक रंग अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 होने वाले हैं। अगला कार्यक्रम सुनिएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से थोड़ी ही देर में।

0: बुंदेली समाचार।
1: भैया हरो, आज है शुक्रवार और आज के दिन आपनों को इंतजार होते है कि आप अपने पसंद के फिल्मी गीत सुनो, तो आपनों के लाने प्रस्तुत है आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। और जो हमारे पास पहलो पत्र आ गया है वो है हमारे पास नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन को। जी सभी जने सुनो चाहते हैं फिल्म सिलसिला में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को, संगीत है शिव हरि को और गीत है जावेद अख्तर को। तो सुन में जो गीत

भैया हर रोग कई बार ऐसे होते हैं कि अपने रक्त में ऐसे विकार आ जाते हैं जिनसे कि हमारे शरीर अस्वस्थ हो जाते हैं, और जो विकार आउट हैं वे कई बार हमारे जो अनुवांशिक रूप से, मतलब हमारे दादा दादी, नाना नानी या हमारे माता पिता से हमें जो अनुवांशिक रूप से जो बीमारी मिल जाते हैं, जिसको अपन थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं। तो आज पूरा जो विश्व है थैलेसीमिया दिवस के रूप में मना रहा है, और जा दिवस मनावे के पीछे यही उद्देश्य है कि जन जन लो ई बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करो जाए, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा ई बारे में सचेत करें कि उनके उपचार में हम ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, और जो थैलेसीमिया से पीड़ित लोग हैं उनके लाने हम सम्मान पूर्ण रूप से उनको सही रूप से इलाज के लाने उन्हें प्रेरित करें। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कोनो भी विवाह करत है तो उसे पहले वे अपने जो है खून की जांच करा लेवे। कई बार एक ही अगर ब्लड ग्रुप हो जाते है, एक ही सो खून को ग्रुप होते है, तो ई रोग के बढ़वे की संभावना ज्यादा बन जाते है। तो जिनको भी थैलेसीमिया रोग है उनको सम्मानजनक जीवन जी सके उनके लाने जरूरी है कि उनको समय समय पर स्वास्थ्य जो नीतियां हैं उनके बारे में उनको जानकारी देते रहे। और कई बार जो है इको अलग अलग विषय के रूप में हर साल बता करके और लोगों को जागरूक करो जाते है। जैसे ई बार को विषय है अब और छिपा नहीं है, अनजाने लोगों को ढूंढना है, मतलब हमें थैलेसीमिया के लोगों को ढूंढना है इस विषय के आधार पर जो दिवस इस वर्ष मनाओ जा रहा है। तो हम सवाई को जो उद्देश्य भाव चाहिए कि हमें लोगों को जागरूक करने हैं और ई बीमारी को खत्म करने हैं। जब लोग हम अपने सवाई जन को जो जागरूक ना करते हैं कि हमें अपने जो ब्लड ग्रुप है उसके बारे में जानकारी भाव चाहिए जिससे कि हम ई बीमारी को कम कर सके। और अगलो पत्र जो है हमारे

है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति, रियांश ठाकुर को, और छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक जावेंद्र कुमार वर्मा को। ये सभी जने सुनमो चाहत है फिल्म खेल खेल में आशा भोसले को, संगीत है आर डी वर्मा को और गीतकार है गुलशन बावरा। तो सुनाते हैं जो गीत।

यारो जैसे गर्मी में अपन को अपना ध्यान रखो की बहुत जरूरत होते है, वैसे ही अपने जो खेती किसानी के सांगी हैं, अपने चाहे ढोर बचेरी हूँ, अपने पशु हुए, सबको अपन को ध्यान रखो जरूरत होते है। कहे के अपने पशुओं को भी गर्मी लगत है और उनसे उनको बचाव करवो भी जरूरी है। सबसे पहली बात तो जा है कि हम उनको ठंडो और ताजो पानी दिन में 2-3 बार पिया उतरेवे। और दूसरी बात जा है कि जब भी हम उनको बांधवे तो छायादार और हवादार जो स्थान होए वो ही अपनी उनकी सारन में उनको बांधे। और सबसे बड़ी बात जा है उनको खाबे खिलाने अपन चारा या भूसा खिलावे तो दोपहरिया में उन्हें गौशाला से निकालवे नहीं। काहे कि अगर अपन ने दोपहरिया में उनको छोड़ दो बाहर तो उन्हें भी लू लगवे को डर बनो रहते है। और ज्यादा से ज्यादा उनको नमक खवावे, काहे कि नमक खावे से उन्हें पानी की प्यास लगत है और वे भी खूब ज्यादा पानी पियत है, जिससे कि वे उनके शरीर में तरावट बनी रहते है। और जब आप ध्यान रखने हैं कि अगर अपन गौशाला में या उनको सार में बांध रहे हैं तो ऊखों अपन को धूप से बचाओ की जरूरत है। या तो अपन उनकी गौशाला को पुआल से ढक देवे या खस के टाट डाल के अपन उनको भी ठंडो रख सकते हैं। और उन्हें 24 घंटे साफ और ताजो पानी सबसे ज्यादा जरूरी होत है। सुबह और शाम को ही अपन उनको नहावे, दोपहरिया के ना नहावे, काहे कि उन्हें लू लग सकत है। और अगर अपन को जो सुविधा है तो उन्हें उनके गौशालाओं में भी पंखे और कूलर लगा के रखें। और ज्यादा से ज्यादा ये बात को ध्यान रखें कि उनको जो भी खाना देवे या सानी देवे उनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हो सके। और अगर कहूँ ये लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं कि उनको लू लग गई है तो तुरंत ही पशु चिकित्सक से उनको दिखा के उचित इलाज भी अपन करावे। और अब देखो अगलो पत्र है हमारे पास, वो है सपना संगीता रोड इंदौर से। लाल फतेह सिंह चंदानी, लीला फतेह सिंह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया को, ये सभी सुनवो चाहत है। फिल्म वचन में मोहम्मद रफी को, संगीत है रवि चंद्र को और गीत कार है प्रेम धवन। तो सुनाते हैं अपन भी इनके संगे।

अगला पत्र है हमारे पास शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से, अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और के श्रीवास्तव को, और अनूपपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और उनके मम्मी पापा और लवी श्रीवास्तव को। तो जे सभी जने सुन चाहत हैं फिल्म कटी पतंग को, गीत किशोर कुमार के स्वर में, संगीत है आर डी वर्मा को, गीतकार है आनंद बख्शी, तो सुनत है।

यारो अगलो पत्र है मेरे पास देवा से, नागू सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत, अभिषेक कुमावत और राजा रामनगर देवा से, राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, चीकू सल्लू को और उपाध्याय नगर देवा से, मुरलीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा को, जे सभी जने सुनवो चाहते हैं। फिल्म जबक में स्वर है लता मंगेशकर को और संगीत है चित्रगुप्त को और गीत है प्रेम धवन को। तो सुनत है जो गीत।

वैयाहरो अबिरिया है सूचना की। सो आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 10/5/2026 को यानी रविवार के दिन शाम 7:30 से 8 बजे लो सजीव फोन इन कार्यक्रम को प्रसारण करो जे है। ई हेलो ग्राम सभा के लाने विषय है जायद उद्यान की फसलों पोषण प्रबंधन और सामयिक कार्य। ई कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 10/5/2026 यानी रविवार को संजय 7:30 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर 2660902 और 2660903 पे फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुन लेवे। दिनांक 10/5/2026 रविवार को संजय 7:30 से 8 बजे के मध्य फोन नंबर हुई है 2660902 और 2660903 और भोपाल को एसटीडी कोड है 0755। तो अवश्य आप जो सूचना को ध्यान में रखत भाई अपने फोन लगावे और अपनी समस्याओं को समाधान लेवे। और अब अगलो पत्र है हमारे पास पटेल नगर मालोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया, बेबी आर्ज जाजौरिया को जे सभी सुनबो चाहते हैं फिल्म कटी पतंग में किशोर कुमार को और संगीत है आर डी बर्मन को और गीतकार है आनंद बख्शी। तो सुनते हैं जो गीत।

भैया रो अभी रिया हो रही है आप औरों से आज्ञा लेवे की। सो चलवे से पहले कल के कार्यक्रम सोई बताओ चले भुंसरा सुने 6:45 पे कृषि चर्चा जायद में सब्जियों की देखभाल वाचक शुरू हुई है डॉक्टर विनोद कुमार कनौजिया को और संजय सुने प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान और अब आरती बहन को आज्ञा दो राम राम।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

0: सौदागर, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास और सुखविंदर सिंह की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये गीत।

1942 आ लव स्टोरी। इस फिल्म से यह गीत अभी आपने सुना। आवाज थी कुमार सानू की, गीत लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत था राहुल देव बर्मन का। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए संगीत सरिता।

0: पंकज उदास की आवाज़ में ये नज़्म अभी आपने सुनी। कलाम था ज़फ़र गोरखपुरी का।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नज़दीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये गीत।

0: मोहित चौहान की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भेंट वार्ता। विषय है न्यूरो संबंधी समस्याएं और समाधान। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रोहित कुशवाहा, डीएम न्यूरोलॉजी। भेंट करता है दीपक निषाद। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और एक बेहद संवेदनशील विषय के ऊपर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे बीच बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर रोहित कुशवाहा, आप डीएम न्यूरोलॉजी हैं और हम ये जानना चाहेंगे आज की न्यूरो से संबंधित यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याएं हमारे दैनिक जीवन में बढ़ती जा रही हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की बड़ी भूमिका होती है, तो न्यूरोसाइंसेस खासकर डीएम न्यूरोलॉजी, एक न्यूरोफिजिशियन की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में समझना चाहेंगे हम।
2: जी जी, नमस्ते श्रोतागण, मेरा नाम डॉक्टर रोहित कुशवाहा है। मैं एक डीएम न्यूरोफिजिशियन हूँ, डीएम न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं एम्स से मैंने अपना डीएम न्यूरोलॉजी का कोर्स किया है। एज ए न्यूरोफिजिशियन बहुत सी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए और उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन का भी क्या रोल है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं उसको छोटा रूप समझ के मिस कर दें, तो ऐसी बीमारियों के कुछ संकेत जो हमें मरीज से वो थोड़ी देर बात करने पे समझ में आते हैं, जब आप उसको कुछ एग्जामिन करते हैं तो ये विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी की तरफ लेके जाती हैं।
1: डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि न्यूरो से संबंधित जो प्रमुख समस्याएं होती हैं, खासकर जो आप लोगों को प्रैक्टिस में डेली देखने में आती हैं, वो कौन कौन सी समस्याएं होती हैं?
2: तो इसको अगर हम व्यापक रूप पे देखें तो हम इसे दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, इस तरह की न्यूरोलॉजी संबंधित समस्याओं को। एक है जिसको हम ये मान के चलें कि जिसमें मरीज को कुछ समय से समस्या है लेकिन कुछ बहुत इमरजेंसी नहीं है, ठीक है। दूसरे तरह की समस्या है जिसमें मरीज को एकदम इमरजेंसी आई है, तो इस तरह के केस को हम एक इमरजेंसी केस बोलते हैं, और एक तरह के केस जिसमें मरीज आपके पास चेक कराने आते हैं अपना टाइम डिसाइड करके, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो दोनों समस्याओं का अपना विशेष रोल है। जो इमरजेंसी समस्याएं हैं उनके लिए तो आपको इमीडिएटली ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे जांचें हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं जिनका कुछ अपना टाइम कट ऑफ भी होता है कि आपको इतने समय के अंदर ही वो आप ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे तरह की समस्या जिसमें मरीज अपने पास कुछ समस्या उसको पिछले एक महीने एक साल से हो रही है आपके पास दिखाने आते हैं, उस तरह की समस्या इमरजेंसी नहीं होती लेकिन उसको भी आप जितना जल्दी न्यूरोफिजिशियन को डिस्कस कर पाए उतना आपके लिए आसान होता है, क्योंकि वो आपको बेटर ट्रीटमेंट, बेटर फिजियोथेरेपी, बेटर सजेशन, बेटर लाइफस्टाइल का सलाह दे सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, दो प्रमुख समस्याएं होती हैं जिसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण आपने किया, हम एक एक करके दोनों के बारे में विस्तार से समझना चाहेंगे और सबसे पहले उन समस्याओं के बारे में बात करना चाहेंगे जो गैर आपातकालीन होती हैं, नॉन इमरजेंसी किस्म की होती हैं। तो उसमें वो कौन सी समस्याएं आती हैं जिसमें जो पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं, रूटीन चेकअप के लिए आपके पास आते हैं?
2: तो नॉन इमरजेंसी समस्याएं जिसमें मरीज हमारे पास आते हैं, सबसे मुख्य जो हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती हैं, एक जिसको हम सिरदर्द बोलते हैं, दूसरा उनको कहीं गर्दन या कमर में दर्द, इस तरह की समस्या से संबंधित हो सकती हैं। तो जैसे पहला सिरदर्द

0: जिसको हम माइग्रेन एक भाषा में समझते हैं, तो इस तरह की बीमारी है जो आज की तारीख में हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हमारी सोसाइटी में बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हैं और सही अवेयरनेस इसके बारे में लोगों को नहीं है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ये सिरदर्द से संबंधित समस्या है तो वो जाके आसपास कहीं भी सिटी स्कैन और MRI जैसी महंगी जाँचें कराना शुरू करते हैं और बहुत सारे महंगे महंगे ब्लड टेस्ट भी करा लेते हैं, जिसमें मरीज बहुत अपना पैसा भी खर्च कर देते हैं, लेकिन अंत में जब वो किसी न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोफिजिशियन के पास आते हैं तो उनको पता चलता है कि ये समस्या ब्रेन के अंदर ना होके हमारे डेली की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है और इसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ ऐसे मॉड्यूलेशन ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से वो हमें सिरदर्द की तरह दिखते हैं। तो एक तो ये समस्या जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लोग लेके आते हैं सिरदर्द माइग्रेन, इसके कुछ अपने रूप भी होते हैं। ठीक है, जिसमें लोगों को सिरदर्द ना होके कुछ अलग तरह के लक्षण भी आते हैं, जैसे चक्कर आना, उल्टी जैसा मन करना, ये भी एक तरह के माइग्रेन के ही प्रकार होते हैं। तो इसके बारे में भी जब मरीज किसी सुपर स्पेशलिस्ट न्यूरोफिजिशियन के पास जाता है तो वो उनको समझाते हैं कि ये किस तरह से हो रहे हैं। दूसरा जो एक समस्या हमेशा बहुत सारे लोगों को देखने को मिलती है उनकी लाइफ स्टाइल की वजह से, जैसे एक सियाटिका की समस्या को हम समझते हैं कि कमर दर्द सियाटिका बहुत कॉमन है। दूसरा हमारा सर्वाइकल जैसे लोग बोलते हैं गर्दन में दर्द होना, तो ये कुछ समस्याएं हैं। इसमें भी अगेन भ्रांतियां हैं कि ये दर्द हो रहा है तो अब इसको जाके आगे जाके सर्जरी होने वाली है या सिटी स्कैन या MRI ही पेशेंट को लगने वाला है। तो अगेन ये न्यूरोफिजिशियन के पास जब जाते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कितनी जांच की जरूरत है और हमें कुछ अपने एग्जामिनेशन जो हमारा पार्ट होता है चेक करके मरीज को बता सकते हैं कि ये जो भी उनको इशू हो रहा है उसकी सीवियरिटी कितनी है। तो ऐसा नहीं है कि हर केस में आपको सिटी स्कैन MRI जैसी जांचें करानी है, हर केस आपको पेशेंट को सर्जरी की तरफ ही ये जाने वाला है ऐसा नहीं है। मैक्सिमम केस आप उनको अच्छे से केवल काउंसिल करके उनकी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके ये आप चेंज कर सकते हैं। तो ये दो समस्याएं हैं जिसमें हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा ग्रसित है इन चीजों से।
1: जी डॉक्टर साहब, हम माइग्रेन की समस्या के बारे में बात करना चाहेंगे। माइग्रेन की समस्या अक्सर जो गृहिणी होती हैं, घर की महिलाएं होती हैं, उनमें देखी जाती है और ये समस्या बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करती है, बहुत लंबे समय तक ये समस्या जारी रहती है। तो क्या इसका इलाज संभव है?
0: जी,
1: पूर्णतः इसका इलाज संभव है। और आपने बताया कि लाइफ स्टाइल संबंधी डिजीज है, तो ये लाइफ स्टाइल संबंधी बीमारी कैसे हो गई?
0: तो ये माइग्रेन बेसिकली सिरदर्द जिसको हम भाषा में समझते हैं, तो हम जैसे देखें कि पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में होता है। महिलाओं में थोड़ा कम होने का कारण अगेन लाइफ स्टाइल ही है, ना कि कोई शरीर में कुछ विशेष ऐसे तत्व जो महिलाओं में निकलते हो ज्यादा। माइग्रेन को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो माइग्रेन का मतलब है हमारे शरीर में कुछ विशेष केमिकल तत्वों का बढ़ना जो कि ब्लड के साथ हर किसी के शरीर में उपलब्ध रहते हैं। अगर उनकी मात्रा एक विशेष मात्रा से ऊपर पहुंचती है तो वो माइग्रेन कराती है। कुछ विशेष कारण है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि पानी की कमी होना शरीर में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि आपका प्रॉपर हैवी इंटेक डाइट जो आपकी होनी चाहिए, आप उसमें अगर डिले करते हैं तो ये केमिकल आपके शरीर में थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू करते हैं और वो आपको सिरदर्द की तरह समझ में आते हैं। तो महिलाओं में क्यों ज्यादा होते हैं? महिलाएं जो हमारी सोसाइटी में जो उनकी दिनचर्या जिस तरह से सेट की गई है उसमें ये है कि वो जब रात में सो के सुबह उठती हैं तो सबसे पहले अपना काम, अपनी सारी चीज़ें स्टार्ट करना शुरू कर देती हैं। ना इसमें उनको एक ग्लास पानी मिलता है, ना ही वो अपना कुछ चाय पीती हैं, वो सीधे अपना शिफ्ट करती हैं दोपहर के लंच पे, जो भी होता है उनका 12 बजे से शुरू होता है, 12 से 2 बजे के आसपास होता है। तो ये दो फैक्टर जो मैंने आपको बताया कि जिसको भी अगर माइग्रेन जैसी कोई समस्या है, अगर वो लगभग 1.5-2 लीटर पानी अपना 24 घंटे में पीना शुरू करें और सुबह का अपना ब्रेकफास्ट को उसको ठीक है हैवी डाइट में थोड़ा सा कन्वर्ट कर लें, 2-3 चपाती, 2-3 पराठे जैसी चीजें अगर वो अपने 9-10 बजे से पहले खाते हैं तो 90% मरीजों को दवाइयों की जरूरत नहीं लगेगी माइग्रेन में।
1: जी डॉक्टर साहब, आपकी बातचीत से ये स्पष्ट है कि बहुत हद तक ये जीवन शैली संबंधी समस्याएं हैं और अच्छी मात्रा में पानी और पौष्टिक आहार लेकर के आप इसे दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक समस्या के बारे में आपने और बात की, सियाटिका की बात की, तो सियाटिका की समस्या क्या ये पोस्चर से संबंधित है? ये भी लाइफ स्टाइल से संबंधित एक समस्या है और कहां ये तय करें कि ये ऑर्थो से रिलेटेड समस्या है या ये न्यूरोफिजिशियन से संपर्क करना चाहिए?
0: तो बेसिकली सियाटिका की समस्या ये भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा महिलाओं में हम जब सोसाइटी में देखते हैं तो थोड़ी ज्यादा कॉमन हमें देखने को मिलती है। तो सियाटिका के दो मुख्य कारण जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक तो है पोस्चर रिलेटेड भी है जिसमें हम बहुत लंबे समय तक ऑफिस में अपनी चेयर पे ठीक है काम करते हैं या फिर एक पोजीशन में बैठे रहते हैं काफी लंबे समय तक, तो ये समस्या लोगों को देखने को मिलती है। तो उस केस में हम सजेशन यही देते हैं कि हर 45 मिनट 1 घंटे में 2 मिनट के लिए भी अगर हम अपना पोस्चर चेंज करें, खड़े हो जाएं, तो वो जो हमारा जो स्पाज्म हो रहा है, जो मसल में जो है ना बहुत देर तक एक पोजीशन में बैठे रहने से जो दर्द इकट्ठा हो रहा है तो वो रिलीज हो जाता है। तो मरीज को इस समय इस समस्या से थोड़ा सा अपने बेड और अपनी कुर्सी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसकी पोजीशन को भी चेंज करके आप इससे फ्री पा सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो हमें 90% लोगों में देखने को मिलता है वो वजन उठाने से रिलेटेड रहता है।

0: तो अगेन जैसे हम बताएं अगर कि जैसे महिलाएं जब अपना काम घर में शुरू करती हैं, किसी भी तरह का घर में कोई बड़ा 15-20 किलो का कोई सामान रखा हुआ है, कोई सिलेंडर रखा हुआ है, कुछ भी उठाते हैं, तो अगेन जो कि इनका वेट बियर करने के लिए अभी कैपेबल नहीं है, तो जब वो इस तरह से उठाती हैं तो उसका पूरा लोड उस पर्टिकुलर सीआरटी का, जिसे हम नस बोलते हैं, उस पर जाता है और वो दर्द स्टार्ट होता है और उनको समझ नहीं आता है कि ये, उनको लगता है कि ये मेरी डेली दिनचर्या का पार्ट था, ये तो मेरे लिए नॉर्मल बात है कि इतना मैं वजन उठा सकती हूँ, लेकिन हर किसी की अपनी कैपेसिटी है। तो ये दो कारण हमारे सोसाइटी में सबसे ज्यादा सीआरटी का से संबंधित मिलते हैं। अगेन ये हड्डी की समस्या है या फिर न्यूरोलॉजी से संबंधित समस्या है, तो ये अगेन नस की समस्या है, इसमें कोई विशेष, ये नस जो हमारी होती है हड्डियों के पास, तो वो थोड़ा सा डिस्क और जो उसमें दिक्कत आने की वजह से नस में दिक्कत कंप्रेशन होता है, लेकिन अगेन तो इसमें बेटर ऑप्शन यही है कि आप एक न्यूरोफिजिशियन के पास जाएं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में आपके सर्जरी करने वाले नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें आपको केवल पोस्चर चेंज करने के लिए हम एडवाइस कर सकते हैं, डेली लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करें उससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, और कुछ फिजियोथेरेपी भी होती है जो लगभग 90% पेशेंट को बिना मेडिकेशन के भी ठीक कर सकती है।
1: स्पाइन का जो कर्व होता जी, है जी, उसको भी क्या हम फिजियोथेरेपी या फिर पोस्चर परिवर्तन से सही कर सकते हैं?
0: तो एक विशेष तरह का कर्व हमारे लिए निर्धारित है कि कहां पे उसका कितना झुकाव होना चाहिए। तो सीआरटिका की समस्या किसी को होती है, इनिशियल फेस में होती है, तो अगर हम उसमें प्रॉपर फिजियोथेरेपी लें, प्रॉपर अपना पोजीशन का ध्यान रखें, तो डेफिनेटली हम उसको बिना मेडिसिन के उस कर्व को भी चेंज करते हुए सीआरटिका की संबंधित समस्या से रिलीफ पा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, दो तरह की समस्याएं हम और डिस्कस करना चाहेंगे, खासकर मिर्गी की, और मिर्गी के अलावा आपने एक और समस्या के बारे में बात की है, वो है पैरालिसिस की। ये मेरे ख्याल से बहुत गंभीर किस्म की समस्या है जिसे हम इमरजेंसी श्रेणी में रखते हैं, उसमें आती है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
0: दोनों समस्याएं, पैरालिसिस और मिर्गी, बहुत इमरजेंसी कंडीशन होती है। पैरालिसिस की समस्या इतनी थोड़ी सी ज्यादा अवेयर हो जाती है क्योंकि लोगों को दिखता है कि एक तरफ का हाथ पर काम नहीं कर रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, लेकिन इसमें समय का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी आपको कुछ इस तरह के लक्षण आते हैं तो आप तुरंत न्यूरोफिजिशियन के पास जाएं, और क्योंकि एक प्रॉपर कट ऑफ टाइम है कि आपको 4 से 5 घंटे के अंदर हम कुछ विशेष तरह के इंजेक्शन देके उसको इमीडिएटली आपको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, एक ये होता है। दूसरा, कुछ विशेष बहुत ज्यादा केस कभी इस तरह का भी पैरालिसिस पड़ता है जिसमें दिमाग के अंदर ब्लड निकलना है, जिसे हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, तो ये अगर छोटे साइज का है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे बीपी कंट्रोल नहीं होने की वजह से हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। अगर ये बहुत बड़ा है और मरीज एकदम बेहोशी जैसी स्थिति में चले गए हैं, तो हो सकता है उस केस में आपको इमीडिएटली सर्जरी जैसे कोई डिसीजन भी लेने पड़े, जो कि इनिशियल फेज में न्यूरोफिजिशियन ही लेते हैं, तो उसका भी बेनिफिट बहुत ज्यादा है। हम जितनी जल्दी करेंगे पेशेंट की रिकवरी उतनी फास्ट होगी। तो ये सारी चीजें, कहने का मतलब ये है कि ट्रीटेबल है, बट आपको अवेयरनेस समय की रखनी पड़ेगी। दूसरा, मिर्गी संबंधित समस्या के बारे में भ्रांतियां बहुत हैं, और मिर्गी एक ऐसी चीज होती है, एक मिर्गी का दौरा जिसमें हम समझते हैं कि बहुत हाथ पैर के दौरे आ रहे हैं, हाथ पैर अकड़ गया है, मुंह से थूक निकल रहा है ना, बेहोश हो गया है मरीज। इसके अलावा भी कुछ विशेष तरह की मिर्गी आज की तारीख में हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, जिसमें मरीज कुछ देर के लिए सिर दर्द करता है, कुछ देर के लिए उसका 1 सेकंड 10 सेकंड के लिए सराउंडिंग से उसको लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेमोरी लॉस हो जाता है, ये भी एक विशेष तरह के मिर्गी के दौरे होते हैं। सबकी सीवियरिटी बराबर है, सबको अर्ली डायग्नोसिस की जरूरत है ना, कुछ विशेष तरह की जांचों से हम है ना न्यूरोफिजिशियन इनको डायग्नोस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, सारी चीजें ट्रीटेबल हैं।
1: जी, सारी चीजों का इलाज किया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ब्लड प्रेशर का बहुत गहरा संबंध है आपके पैरालिसिस से,
0: बिल्कुल,
1: खासकर जो लोग दवाइयां नियमित रूप से लेते हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे यदि दवाइयों में कुछ हद तक उनका अंतराल हो जाता है?
0: तो ब्लड प्रेशर की समस्या के लिए दवाइयों से पहले आपकी दिनचर्या का बहुत ज्यादा रोल होता है। 24 घंटे में अपने लिए कुछ 30 से 45 मिनट की वॉकिंग एक्सरसाइज आपको अपने लिए निकालनी पड़ेगी, आपको अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आप अपना बीच बीच में रेगुलर बीपी का चेकअप अपना कराते रहें, ठीक है। अगर बीपी आपका एक कंट्रोल लिमिट में है तो आप बहुत कम रिस्क पे हैं जिसमें आपको कभी ब्रेन हेमरेज जैसी चीजें हों, है ना। 90% से ज्यादा केसेस ब्रेन हेमरेज के ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले कभी पता ही नहीं था कि मुझे ब्लड प्रेशर है और ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो उन लोगों के लिए कहने का ये है कि संकेत हमें कभी ना कभी मिलते हैं, किसी तरह से आपको सिरदर्द के रूप में मिलेंगे, शरीर में थकान के रूप में मिल सकते हैं, कभी चक्कर आने के संकेत हो सकते हैं। तो ये संकेत होते हैं कि शरीर में आपके ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप हमेशा उसको चेक कराएं, ठीक है, और उस स्थिति में ना पहुंचें कि जहां पे आपको न्यूरोलॉजी की जरूरत पड़े।
1: जी, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो सामान्य रखे जाने चाहिए ताकि आप न्यूरो संबंधी समस्याओं से बचे रहें?
0: तो सबसे पहले इनको भी अगर हम देखें तो दो तरह से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक वो जिनको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, एक वो जिनको हम थोड़ा सा खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम ब्रेन हेमरेज की बात करें तो बीपी उसका मुख्य कारण है, तो बीपी को हम रूटीन चेकअप से उसके कुछ संकेत समझ के अपना बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा तरह का एक और पैरालिसिस का अटैक होता है जिसे हम खून का थक्का जमना बोलते हैं, तो इसके मुख्य कारण जो हमारी सोसाइटी में मिलते हैं, एक शुगर की बीमारी, दूसरा हमारा स्मोकिंग, एल्कोहल जो पुरुषों में बहुत ज्यादा कॉमन है, ये सारे फैक्टर होते हैं। तो स्मोकिंग, ठीक है, हमारे 90% केस में जब ब्रेन में थक्का जमता है तो उस केस में अगर हम देखते हैं तो स्मोकिंग जरूर उसमें कहीं ना कहीं फैक्टर निकल के आता है, एल्कोहल उसमें संबंधित होता है। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे स्मोकिंग आदमी समझता है कि केवल फेफड़ों को प्रभावित कर रहे हैं, एल्कोहल लीवर को प्रभावित कर रही है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें आपको इन द एंड आखिरी में ले जाके आपको दिमाग को प्रभावित कर रही हैं, और इनके नुकसान आपको जब एक पैरालिसिस का अटैक होता है तो उसकी 100% रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आप इसकी गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। शुगर एक बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी में आज की तारीख में हमारी डाइट की वजह से बहुत ऐसे मॉडिफिकेशन हो रहे हैं जिससे शुगर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो उसका भी आपको चेकअप, ठीक है, उसका भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: जी, बहुत महत्वपूर्ण जांचें या जो पैरामीटर्स है उसके बारे में डॉक्टर साहब आपने बताया कि आप उसे कंट्रोल में रख करके न्यूरो संबंधी समस्याओं से बच सकते हैं। आखिर में चलते चलते आपसे हम जानना चाहेंगे कुछ खास थेरेपीज जिसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूरो संबंधी समस्याओं से बचाव के लिए, और कुछ संदेश जो आप श्रोताओं को देना चाहें ताकि वो न्यूरो संबंधी समस्याएं या तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याओं से बचे रहें।
0: जी बिल्कुल, तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हमने कुछ बीमारियां आपको बताई, तो उसमें जैसे आपको अगर सिरदर्द संबंधित चीजें हैं तो आपको कोई थेरेपी की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही घर पे उसका इलाज कर सकते हैं। प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें, खाना आपको अवॉइड नहीं करना है, आपकी स्लीप साइकिल कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा एलईडी वर्क या फिर जो सिस्टम वर्क होते हैं कंप्यूटर वर्क होते हैं उसमें बीच बीच में पॉज लेने हैं, ये हो गया। मिर्गी के संबंधित में आपको अगेन आपको कुछ चीजें अपनी, जैसे शुगर कम होने की वजह से एल्कोहल बहुत ज्यादा लेने की वजह से भी मिर्गी के दौरे बहुत कॉमन है, आप इन चीजों का ध्यान रखें। आपको अगर कोई नेक पेन या फिर सर्वाइकल सियाटिका का पेन है, बिना दवाइयों के आप उसकी जो भी एक्सरसाइज आपको न्यूरोफिजियन डॉक्टर बताते हैं आप उससे ठीक हो सकते हैं। पैरालिसिस के लिए मैंने आपको कुछ तरीके बताए जिसका आप चेकअप कराते रहें, उनको प्रिवेंशन करें, तो आप बहुत हद तक इन सारी बीमारियों से गंभीरता से आप बच सकते हैं।
1: जी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर रोहित कुशवाहा, डीएम न्यूरोलॉजी। जी, आपने न्यूरो से संबंधित तमाम जो समस्याएं हो सकती है जो आज हमारे समाज में पाई जा रही हैं, कैसे उनका हम बहुत सुविधाजनक तरीके से उपचार कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, और खासकर हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो जीवन शैली है, उसमें परिवर्तन ला करके कैसे इन समस्याओं से बच सकते हैं, बहुत विस्तार से प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, विषय था न्यूरो संबंधी समस्याएं और समाधान, विशेषज्ञ स्वर था डॉक्टर रोहित कुशवाहा, डीएम न्यूरोलॉजी, भेंट करता थे दीपक निषाद। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं, थोड़ी देर में सुनिएगा समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की

0: यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है।

0: आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं है। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है, आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
3: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में ये लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का

0: उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान

0: दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकार ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9 बजे हैं, लीजिए आप सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला फरमाइशी गीत।

अपनी। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं सोनू निगम, जयेश गांधी और जसविंदर नरूला की। गीत लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था हिमेश रेशमिया ने। पसंदगी थी आप सभी की। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, शिवा, शिवांशु, रामदास, यश, अवधेश, रमाकांत, प्रेम नारायण, रमेश, सुजीत, प्रमोद और विवेक। नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष बाकरे।

0: सुनैना, सुकन्या, सविता और आपके सभी साथी, जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचित प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद सानवी और आपके सभी साथी, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य, कोयल, नानक चंद और आपके सभी साथी, रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल, भाविक और आपके परिवार के सभी सदस्य, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या और आपके परिवार के सभी सदस्य, छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और आपके सभी साथी।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। ₹1,000 से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।
0: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये गीत।

0: बादल इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की, गीत लिखा था समीर ने, संगीत था अनु मलिक का। फरमाइश थी आप सभी की कुरावली से राशिद हुसैन, नसरीन नौरीन, आसना और कैफ। हरियाणा से देवेंद्र, सतवीर सिंह, राजपाल, अभिषेक, योगेश, आरजू, पूजा, नव्या और आपके सभी साथी। यवतमाल से राहुल मनवर, विशाल सरला, चेतन रोशनी, प्रियांशी और आपके सभी साथी। चंडीगढ़ से सतीश, अनेजा, विमला और आपके परिवार के सभी सदस्य। छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी और आपके सभी साथी। हरियाणा से जसविंदर सिंह, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर और आपके सभी साथी।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये फरमाइशी गीत।

बरसात इस फिल्म से यह गीत आपने सुना, आवाज़ें थीं कुमार शानू की, गीत लिखा था समीर ने, संगीत था नदीम श्रवण का, फरमाइश थी आप सभी की, बलिया से ओम प्रकाश।

राय, उषा, अमित, प्रतीक, रोशनी, प्रांजल और आपके सभी साथी। गांधीग्राम से प्रवीण सोनी जगदीश और आपके सभी साथी। छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल। गुनौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा। बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल, रशिका, आकृति, वंश और आपके सभी साथी। और अब सुनिए कार्यक्रम में ये अगला और अंतिम फरमाइशी गीत।

संघर्ष इस फिल्म से यह गीत अभी आपने सुना। आवाज थी सोनू निगम की, गीत लिखा था समीर ने, संगीत था जतिन ललित का। पसंदगी थी आप सभी की। दुर्ग से सीआर कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी, विपुल और आपके सभी साथी। छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, तनुजा, ईशांत और आपके परिवार के सभी सदस्य। छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद, देवांगन, नंदिनी, प्रकाश और यहीं से गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी और आपके सभी साथी। कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी और आपके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत के साथ कार्यक्रम मनचाहे गीत अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगा हर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं, थोड़ी देर में सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।

लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया।

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968 प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

0: कदम।
1: हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे, जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ मिलकर उन्होंने बनाई फिल्म।

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए

0: इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म संजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ।
2: मतलब कब बात बोलूं साहब?

0: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।
1: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।

0: हेरा फेरी है और मौत की हेरा फेरी।
1: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
2: सिकंदर का है? मैं आऊं विशाल। जी शुरू कीजिए।
3: मंगलम भगवान।
2: अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूं।
3: वस्त्र कंधे पर रख
2: सिकंदर। सिकंदर क्या चरण से झड़प हो गई?
4: नहीं बताती हूँ। दिलावर मुझे उठाकर ले गया था। सिकंदर मुझे बचाकर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं तुम्हें और नहीं होता।
2: बस बस करो मेम साहब।
5: क्या
2: काम नहीं तेरी मेम साहब जिससे तू
5: नहीं?
4: हमेशा मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को
2: करता। नहीं
4: सिकंदर आज मुझे कह लेने दो। आज मुझे कह लेने दो विशाल। सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया
2: सिकंदर। ये तो क्या किया?
1: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
4: तुम?
6: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा? जानती हो लावारिस क्या होता है?
7: मेम साहब लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती। अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना। पर गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
1: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया। एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब

0: सूरज बहुत तेज चमके, उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989, प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।
1: वादा करे।

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरू राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

प्रकाश मेहरा गीतकार भी थे। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में गाने भी लिखे हैं, जैसे फिल्म लावारिस का ये गाना भी प्रकाश मेहरा की कलम का कमाल।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गईं उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है, और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह।

श्रोताओं नमस्कार। छाया गीत के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। बचपन का साथ छूटा तो मन में एक आस ने घेरा डाला, कोई आएगा दूर देश से लेकर सपनों का उजियारा, वो आएगा तो संग लाएगा एक अनोखा जादू, उसकी नजरों के सामने न जाने कैसे होगा अपने दिल पर काबू। झूम उठेंगे रात दिन खुशियां आंखों से छलके, न खो जाएं कहीं मुझसे मेरे ये सुहाने सपने, ये सोचकर ही तो बंद कर ली हैं खुशी से अपने पलकें।

देखो ना, वो दूर से बहती आई हवा लिए आई है सौंधी खुशबू उनके कदमों की। कभी सुनती हूँ आहट तो कभी गूंजती है मन में एक धुन। लगता है देखे बिना ही मेरे मन ने उन्हें ही लिया है चुन। सखियां सहेलियां अब बनाने लगी हैं बातें, इधर मैंने भी हथेलियों पर सजा ली हैं सारी रातें। पर इस खजाने में बची हैं चंद रात और मुट्ठी भर सपना। तुम आ जाओ तो ले जाओ साथ इन्हें बनाकर दिल से अपना।

आखिर हुआ इंतजार खत्म और आ ही गया वो चितचोर। वो देखता है गांव की गलियां और हम निहारे बस उसकी ओर। कभी पूछते हैं उसका हाल तो कभी टटोलते हैं अपने जी को। क्या है ये वही देखा था सपनों में इसी को। होश अब दिल की पनाह मांगते हैं, जज्बात मेरे सपनों की दहलीज लांघते हैं।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। हुआ वही जिसका ना अंदेशा था ना खबर, क्या कभी परदेसी बसे हैं इस दिल के नगर। परदेसी का ना कोई ठौर ना ठिकाना, दो पल यहाँ रुकना और अगले पल दूसरे छोर तक जाना। कब हुआ है आसान ये दिल का लगाना, दिल के इस खेल का पड़ेगा अब आंखों को हिसाब चुकाना। भीगती पलकें भीगते जज्बात, क्या मुझ जैसे ही होंगे उसके भी हालात।

दिल का ये मेल कोई आसान काम नहीं, जिसने दिया दुख लेते हैं उसका नाम ही। भीगे आंचल, बिखरा काजल, सूखे होंठ, सामने तू है सब कुछ, अब किससी कैसी ओट। छुप पाया है क्या चांद चांदनी से कभी, हमारे होंठों पर भी तो सजे हैं अब तक गीत वही। वो हो दूर तो क्या, मेरी हर धड़कन पुकारती है बस उसका ही नाम। सुबह शाम

उस परदेसी ने किया है ऐसा जुल्म कि हम रहे ना हम। ये आदमी उसकी कभी मनाए गम तो कभी मुस्कुराहट का आलम। उसे याद करके जितने आंसू बहाए उसकी ही याद में उतने ही गीत भी गाए। शायद यही तो है प्यार का सर कि जिसके लिए बेचैन होते हैं उसको ही याद करके चैन से सोते हैं। प्यार की इस उधेड़बुन में हम तो उसकी ही धुन में खोते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया

केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह आपकी सेवा में एक बार पुनः उपस्थित होंगी।